सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है सोमवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026, 5:58:40 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी रांची है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है टाण जमीन में बोए जाने वाली फसलें। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
2: खरीफ के मौसम में टाण जमीन में धान, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मड़ुआ, उड़द, मूंग, कुलथी, सरगुजा इत्यादि लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हल या ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में बिखेर दें। प्रदेश की टाण जमीन अम्लीय है, अतः इससे अच्छी उपज लेने के लिए चूने का प्रयोग आवश्यक है। अगर हम लाइन में चूना डालें तो प्रतिवर्ष 3 से 4 क्विंटल चूना की आवश्यकता होती है और मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है, जिससे उपज अच्छी प्राप्त होती है। टाण जमीन में यदि आप खेती करते हैं तो इसके लिए आपको उन्नत किस्मों की जानकारी, बीज दर और उर्वरक की मात्रा क्या होगी इसका भी जानकारी रखना है। जैसे कि यदि आप धान लगा रहे हैं तो धान के लिए उन्नत प्रभेद में बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, वंदना, बिरसा धान 108 ये प्रमुख है। बीज दर 80 किलो प्रति से 100 किलो प्रति हेक्टेयर है और उर्वरक की मात्रा जो है नित्रजन, फास्फोरस और पोटाश 40 किलो, 20 किलो, 20 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप मक्का लेना चाहते हैं तो बिरसा मक्का 1 जो करीब 85 दिनों में तैयार हो जाती है, बिरसा मक्का 2 जो करीब 75 दिनों में तैयार हो जाती है और सुवान कंपोजिट 1 ये करीब 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर है और उर्वरक की मात्रा जो है नित्रजन यानी नाइट्रोजन जो है 100 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप अरहर की खेती करना चाहते हैं तो उपास 120 लगा सकते हैं जो करीब 130 दिनों में तैयार हो जाती है, बिरसा अरहर 1 जो करीब 190 दिनों में तैयार हो जाती है, आशा जो करीब 200 दिनों में तैयार हो जाती है, बहार 230 दिन की फसल है या नरेंद्र अरहर 1 जो करीब 240 दिन की फसल है इसको आप लगा सकते हैं। बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप मड़ुआ की खेती करना चाहते हैं तो मड़ुआ की उन्नत किस्मों में A404 है जो करीब 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है, बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है। गुंदली की अच्छी किस्म में, उन्नत किस्म में बिरसा गुंदली 1 है जो करीब 55 से 60 दिनों की फसल है। कुल्थी की उन्नत किस्मों में बिरसा कुल्थी 1 है जो करीब 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो बिरसा सोयाबीन 1 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगा सकते हैं। बीज दर होगा 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। यदि आप तिल की खेती करना चाहते हैं तो कांके सफेद इसको लगा सकते हैं, बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर है। अगर हम उड़द की बात करें तो बिरसा उड़द 1 या पंत यू 19 ये लगा सकते हैं जो करीब 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है, बीज दर 30 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम अगर मूंग की बात करें तो पूसा विशाल इसको आप लगा सकते हैं। मूंगफली में AK12-24 या बिरसा बोल्ड और सरगुजा की बात करें तो बिरसा नाइजर 1 इसको आप लगा सकते हैं जो करीब 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाती है।
1: खेती किसानी में अभी आप चर्चा सुन रहे थे टाण जमीन में बोए जाने वाली फसलें। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: जीवन में उपदेशों की अहम भूमिका होती है, उन्हें लेकर तमाम बहस भी जारी हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उपदेश सुनने वाले पहले जैसे नहीं रहे, या सुनाने वालों की वाणी में वो ओज नहीं है कि सुनने वालों का मन मस्तिष्क बदल जाए। ग्रंथों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, तो वक्ता श्रोता के बीच शब्द ब्रह्म आखिर क्यों निष्प्रभावी है? किसी धार्मिक आयोजन में वक्ता तो एक होता है, जबकि श्रोता अनेक होते हैं। अगर अच्छे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा, तो मतलब यही निकलता है कि सभी श्रोता अपात्र थे। फिर धार्मिक आयोजन का क्या औचित्य? उपदेशक तो इसी उद्देश्य से निकला है कि वो समाज बदल देगा। यदि वो नहीं बदल पाया, तो उसे भी सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहिए था कि वो अपने अभियान में असफल हो गया। लेकिन कोई भी उपदेशक ऐसा कहने को तैयार नहीं। दरअसल सदुपदेशों के बावजूद सदाचार का लगातार चीरहरण बढ़ रहा है, तो सबसे पहले अंगुली उपदेशक पर ही उठेगी। जमाने को दोष देते समय उपदेशक को अपना भी दोष देखना चाहिए। भारी भरकम कार्यक्रमों एवं जलसों का आयोजन प्रसिद्धि पाने के लिए होता जा रहा है। कोई उपदेशक अपना चरण स्पर्श करने वालों से ये नहीं पूछता कि चरण स्पर्श करने वाला अपने माता पिता की सेवा करता है या नहीं। यदि नहीं, तो वो उपदेश सुनने के योग्य नहीं, और वो उपदेश स्थल से तत्काल उठकर चला जाए। हो ये रहा है कि उपदेशों के नाम पर किसी व्यापारी की तरह अपने उपदेश उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई उपदेशक ये कहते नहीं देखा जाता कि उसे पैसा देने के बजाय किसी गरीब के इलाज, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा, किसी वस्त्रहीन को तन ढकने के लिए पैसा खर्च किया जाए। कहते भी हैं तो वो सीधे नहीं, बल्कि उपदेशक के माध्यम से ही किया जाए। अब यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, धन संग्रह शुरू हो जाता है। अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रचार तंत्र और अन्य माध्यमों की मदद से वे सारे काम शुरू करने लगते हैं, जो व्यक्ति को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि उसकी वाणी को भी कमजोर बनाते हैं। फिर ऐसे लोगों की बात का समाज पर असर पड़ेगा, ये संभव ही नहीं। उपदेश देने वालों को चाहिए कि वो पहले अपना आचरण सुधारें, फिर किसी को सुधारने के लिए सोचें।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 540.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है इस देशभक्ति रचना के साथ। स्वर है अनूप जलोटा और साथियों का।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं। इन भक्ति गानों को संगीत से संवारा है हृदयनाथ मंगेशकर ने। रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की हैं।

लता मंगेशकर की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

स्क्रीन टाइम और दुष्प्रभाव। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर निशांत गोयल, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। 7:45 पर खुला आकाश में सुनिएगा डॉक्टर विद्या भूषण की वार्ता हिंदी भाषा और साहित्य। जानकी देवी और साथियों से हम आपको सुनवाएंगे नागपुरी लोकगीत अपने लोकरंग कार्यक्रम में 8:45 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा श्री अभिराम पाठक से राग देसी में आलाप और धमारम।

10 बजे आओ साथ चलें कार्यक्रम आप सुनेंगे, इसमें आपकी मुलाकात हम करवाएंगे श्री अनवर अहमद से, जो कि चेयरमैन बुनकर उद्योग सोसाइटी और मांझी से हैं। भेंट वार्ता का विषय होगा बुनकरों की समस्याएं और समाधान। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने। दिन के 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी, और इसके ठीक बाद 12:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वालों के लिए बता दें, उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज आप सिद्धेश्वरी देवी से सुनेंगे ठुमरी।

आवो साथ चले। इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण किया जाएगा शाम 4:02 से। हमारी युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:02 से। 5:30 बजे होगा हमारे कामकाज साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक।

शाम 6:02 से हमारे किसान भाई सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में डॉक्टर परवेज आलम से आप सुनेंगे खरीफ आने से पहले खेती की तैयारी के बारे में। इनसे बातचीत की है कृष्ण जीवन पौराणिक ने।

0: अमेरिकयात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीयसम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेन्दु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी रांची है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और दुष्प्रभाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर निशांत गोयल, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
4: मित्रों नमस्कार। मित्रों, मोबाइल ने हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित किया है और खासकर हम जब बात करें महामारी के दौर में तो हर चीज वर्चुअली होने लगी थी, और ऐसे में जो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो हमारे छोटे बच्चों में, विद्यार्थियों में। बच्चे दिन रात मोबाइल से लगे रहते हैं, उनका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और दुष्प्रभाव। बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची के प्राध्यापक डॉक्टर निशांत गोयल साहब को। गोयल साहब स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग काफी बढ़ता जा रहा है, हर समय बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है?
5: जैसा कि आपने बताया कि महामारी के दौरान या उससे पहले भी अगर हम देखें

0: तो जैसे जैसे दुनिया जो है हमारे हाथ में सिमट के आ रही है, मोबाइल का या स्क्रीन का जो चलन है, जैसे हम बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। और कोविड ने तो उसको एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी बना दिया। और इस ज़रूरत की आड़ में हमारे छोटे बच्चे, हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या टैबलेट की स्क्रीन या और सारे जो मीडियम है उनकी स्क्रीन के आदि होते चले जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम जो यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है कि वो अपना जो दिनचर्या है, अपना खाना पीना, अपना सोना, अपना जागना, अपने दोस्तों से मिलना, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो उनके जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो मोबाइल के या स्क्रीन के मोहताज होते चले जा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम टाइमिंग की बात करें, कितना समय लगातार हम देखेंगे तो हम ये समझे कि अब अति हो रही है?
0: देखिए, कोई इसका गाइडलाइन नहीं है कि इतने घंटे कोई मोबाइल देख रहा है या स्क्रीन पे है तो वो ज्यादा है। कभी भी आप देखें अपने बच्चे को कि इस कदर वो स्क्रीन से लगा हुआ है कि उसे अपने खाने पीने की, अपनी पढ़ाई की, अपनी घर की जो दिनचर्या है, कब सोना है, कब जागना है, कब अपना पढ़ाई करनी है, कुछ समय अपने घर वालों के साथ बिताना है जो वो नहीं बिता पा रहा है। दिनों हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करता है, कुछ ज़रूरत होती है तो भी अपने माँ बाप को व्हाट्सअप करके वो जवाब देता है या बोलता है। जब आप ये चीज़ देखने लगें तो आप समझ लीजिए कि ये ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।
1: लगातार मोबाइल से चिपके रहना, आंखों में जलन होना, पूरी तरह से हम नींद नहीं ले पाते हैं, तो क्या क्या दुष्प्रभाव बच्चे पे दिखाई पड़ने लग जाता है? और खासकर ऐसे बच्चे अवसाद से भी घिर जाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है कि आप स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा कम करें, तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके शारीरिक के साथ साथ, जो आपने बताए शारीरिक जो लक्षण बताए, मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। बच्चे एकाकी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो उनका एक सर्वांगीण विकास होता है, जहाँ बच्चे को घर से बाहर निकल के खेलना कूदना है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है, परिवार वालों के साथ अपनी परेशानियाँ शेयर करना है, वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है, वो रुक जाता है। और जब बच्चा बाहर के लोगों के साथ मिंगल नहीं करता है, उनके साथ मिलता जुलता नहीं है, तो जो भी उसके मन में आता है वो कहीं ना कहीं उसके मन में घिरता चला जाता है। और इस तरह के बच्चे जो कहीं ना कहीं घबराहट का, जिसको हम लोग एंग्जाइटी बोलते हैं, बेचैनी का, और जब ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। और ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे नहीं चाहते हुए भी हमारा बच्चा जो है वो एक तीव्र या सीवियर मेंटल इलनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ग्रसित हो सकता है।
1: जी, जब इस तरह की बात आ जाती है, जब बच्चा अवसाद से घिर जाता है, चिड़चिड़ापन उसमें समा जाता है, तो क्या उपाय किया जाए डॉक्टर साहब? और इसमें खासकर जो हमारे माता पिता हैं, उनका क्या भूमिका हो जाता है?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है आज के लिए डिस्कस करने के लिए हम लोगों के लिए, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास एक स्क्रीन है। तो पेरेंट्स की जहाँ तक हम बात करें या माता पिता की हम जहाँ तक बात करें, सबसे पहले तो उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चा जो है वो स्क्रीन एडिक्शन का या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ का शिकार हो रहा है। जैसे हमने लक्षण बताए, अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आपके दिमाग में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चे को और ख़राब होने से या इसके आगे बढ़ने से रोक है। सबसे पहला स्टेप है अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करना। हम सब जानते हैं, बच्चा जो सीख रहा है वो अपने घर के वातावरण से या अपना जो उसका सोसाइटी है उसके वातावरण से सीखता है। हर जगह वो देखता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब अपने ही अपने मोबाइल में या अपने स्क्रीन में लगे हुए हैं। तो हमें अपने घर पर शुरुआत करनी है, अपने बच्चे को एक वातावरण देना है जहां पर कि बच्चे को यह सिखाया जाए कि मोबाइल के बाहर या स्क्रीन के बाहर भी जिंदगी है, और वो हम खुद से उसको एक्सरसाइज करके, खुद से हम उसको करके दिखा सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि आप कुछ नो स्क्रीन समय जो है अपने घर में दिनचर्या में अपने बिताएं, एक आधे घंटे का समय किसी भी टाइम जहां पे सारे परिवार के सदस्य एक साथ बैठे, किसी के भी हाथ में या किसी के भी पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए। और हम लोग बात करें, मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने

0: के दुष्प्रभावों के बारे में भी अपने बच्चों से क्लियरली साफ शब्दों में बात करना बहुत जरूरी है। और कहीं आप देखें कि मेरा बच्चा जो है वो पीछे छूट रहा है, एकाकी हो रहा है, अकेला हो जा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने की तैयारी करें।
1: मैंने आरंभ में कहा यदि बच्चे पर टोका टोकी की जाती है कि आप मोबाइल का उपयोग सीमित करें तो बच्चे में चिड़चिड़ापन भी घुस जाता है, ये ऐसा क्यों हो जाता है?
0: देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं बच्चा जो सीखता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से सीखता है। एक तो बच्चे को हम कुछ करने से रोकते हैं तो उनके जो छोटा जो एक उनका जो बालपन जो होता है वो हर्ट होता है, उसमें उनको तकलीफ होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि भाई जब ये कर रहे हैं वो चीज़ तो मुझे वो चीज़ करने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसीलिए मेन कारण है बच्चों का गुस्सा होना। और केवल बच्चे इरिटेट नहीं होते हैं, मैं आजकल देख रहा हूं और हमारे बहुत सारे साथी देख रहे हैं कि बच्चे कई बार इतना ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं तो वो अपने को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने पेपर में पढ़ा होगा, दो तीन दिन पहले आया कि किसी बच्चे को मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए नहीं किया दिया गया तो उसने एक गलत कदम उठा लिया। तो सिर्फ गुस्सा होना एक छोटा सा एक पॉइंट है, बच्चा किसी भी हद तक जा सकता है अगर हम बच्चे को ठीक से हैंडल ना करें या उसका ध्यान ना रखें।
1: और रात में सोते हुए प्रायः लोग मोबाइल का सहारा लेते हैं। एक समय हुआ करता था जब हम सोने जाते थे तो हल्के संगीत का आनंद लेते थे या कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे, वो खत्म हो गया है। तो क्या कहेंगे हमारे माता पिता को कि स्क्रीन टाइमिंग कम करें, बच्चों के साथ अच्छे समय बिताने की कोशिश कीजिए।
0: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो किसी भी तरह का स्क्रीन, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, वो आपके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। आप शुरुआत करिए, आपको देखा देखी आपका बच्चा भी उसका अनुसरण करेगा। अगर आप ही अपना बेड पे मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे को आप कैसे सिखा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, और मोबाइल का या स्क्रीन का या टीवी का उसमें कोई रोल नहीं है, ये आपको समझना होगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ संवाद करें, बच्चों के साथ बैठें विदाउट मोबाइल, उनको मोबाइल को एक डब्बे में रख दीजिए। आप सपोज खाना खाने के लिए साथ में बैठते हैं, एक बॉक्स में सबके मोबाइल रख दीजिए और जब तक आप 15 मिनट 20 मिनट खाना खा रहे हैं कोई अपना मोबाइल नहीं देखेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अगर करेंगे तो आपके घर का माहौल वातावरण भी सुधरेगा, बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल होगा, साथ साथ आपके आपके बच्चों के साथ जो एक रिश्ता धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है वो भी दृढ़ और सुदृढ़ बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: जी शुरुआत आपको अपने से करनी होगी, जब आप अपने से खुद मोबाइल को कम देखना शुरू करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि एक कहावत है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। शुरुआत आपसे होनी है, यदि आप स्क्रीन टाइमिंग कम करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे कम करेंगे। अच्छे समय बच्चे के साथ व्यतीत कीजिए, अच्छा समय बिताइए, खुशी के पल उनके साथ व्यतीत कीजिए तो आप भी खुश रहेंगे और आपके और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत गोयल साहब, प्रोफेसर केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, आज आप आए और बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और उसके दुष्प्रभाव पर बड़ी अच्छी चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आज के दिन आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय था बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम और इसके दुष्प्रभाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर निशांत गोयल, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी रांची है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम सुबह सुरीली।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की।

0: की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-07 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: सुबह सुरीली प्रोग्राम का पहला गाना है गुड्डी फिल्म से। वाणी जयराम की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, संगीत वसंत देसाई का है।

गुड्डी फिल्म के गाने के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं पनाह फिल्म का गाना। इस गाने को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण। आवाजें हैं नसीरुद्दीन शाह, सिद्धार्थ राय, किरण कुमार और पल्लवी जोशी ने।

अगली रचना है लता मंगेशकर के स्वर में, भरत व्यास के बोल हैं, संगीत वसंत देसाई का है।

0: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
1: इस रचना के साथ ही आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम यही समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी रांची है, मीडियम

0: 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर विद्या भूषण की वार्ता हिंदी भाषा और साहित्य।
1: साहित्य के इतिहास पुनर्लेखन की समस्याएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी उलझन हिंदी पट्टी की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने वाली भाषा है। हम सब जानते हैं कि आज हिंदी इतने बड़े क्षेत्र को अपने में समेट चुकी है कि उसके एक छोर पर चमकने वाली बिजली की गोंद तक दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाती। इस विशाल क्षेत्र में शिक्षा और संस्कार की मुख्य भाषा भले खड़ी बोली हिंदी हो, उसके समांतर हिंदी पट्टी में कई उन्नत विकसित विभाषाओं के प्रभाव को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। इन्हीं में एक है मैथिली, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य भाषा बन चुकी है। देर सवेरे सूची का विस्तार संभावित है। पिछली सदी के मध्य में शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक हिंदी साहित्य के 80 वर्ष दूरदर्शी सोच विचार के लिहाज से खासा चर्चित हुई थी, और आज की तारीख में यह मानने में संकोच नहीं हो सकता कि विद्यापति पर हिंदी और मैथिली दोनों की दावेदारी के पर्याप्त तर्क हैं। सच तो यह भी है कि विद्यापति का शब्द संसार 3 भाषाओं में पसरा है। उन्होंने संस्कृत में कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। दूसरी ओर अवट या अपभ्रंश में उनकी 2 कृतियां मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लेकिन उनकी असाधारण लोकप्रियता की आधारशिला हैं उनकी पदावली, मूलतः शिव की उपासना को समर्पित। कवि विद्यापति को हिंदी में कृष्ण भक्त कवियों की कतार में गिना जाता है। ओडिशा के जयदेव और बंगाल के चंडीदास की परंपरा में मिथिला के विद्यापति ने अपने समय 14वीं-15वीं सदी में अपनी कोमल कांत पदावली से जनमन में जो जगह बनाई वह अप्रतिम मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें बंगाल और बिहार में ही नहीं पूरे हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय मान्यता प्राप्त हुई। सदियों तक लोक कंठ में उनकी पदावली सुरक्षित और संरक्षित रही, लेकिन के शब्द रूपों में लोक गायकों की सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता रहा। मैथिली हिंदी में रचित होने के बावजूद उनकी पदावली पर बंगला प्रभाव मौजूद है और उसे बंगला साहित्य में भी उतना ही सत्कार मिला है। पिछली कई पीढ़ियों की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में मध्य कक्षाओं से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक पूर्व मध्यकाल की हिंदी कविता की वानगी की अग्रिम पंक्ति में विद्यापति की लोकप्रिय गीति कविताएं सुप्रतिष्ठ रही हैं। आज की बदलती प्रतिक्रियाओं की समाज स्थिति में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। गद्य विधाओं की होड़ में कभी कभी कविता हाशिए की ओर सरकती हुई दिख सकती है, लेकिन आधुनिक समाज जीवन में विज्ञान और तकनीक के बढ़ते हस्तक्षेप के दौर में भी मनुष्य के बुनियादी रुझान नहीं बदले। आदमी अभी भी अपने परिजनों को अपनत्व दे रहा है। रूटीनी जिंदगी में बदलाव की चाहत की प्रेरणा के फलस्वरूप पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने लगा है। इस तरह अंततः प्रकृति अब भी हमारी सहचर्या।

0: भाव प्रवाह से सिंचित होती है। इसी अर्थ में विद्यापति इतिहास के चौखटे में मध्यकाल के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो भी उनकी व्यक्ति अगर क्लासिक मानी गई है तो इसी अक्षय ऊर्जा के कारण। उनकी पदावली में राजवंदना के पद भी मिलते हैं, लेकिन वहां मुख्य रूप से भक्ति और श्रृंगार का वर्चस्व स्थापित है। उनके पदों में राधिका नाम वाली नायिका के रूप, अभिसार और मिलन के धनुषी रंग हैं। वहां राधा और कृष्ण रस निष्पत्ति के आलंबन बर बन रह गए हैं। उनकी क्रियाएं स्त्री पुरुष की शाश्वत ऐन्द्रिक आसक्ति से लबरेज हैं। कभी विद्यापति ने न केवल उनके रूप के मानसल सौंदर्य को अंकित किया है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति समर्पित भी चित्रित किया है। विद्यापति की पदावली में सुकुमार कल्पना, चित्तात्मकता, मनोहारी बिंब विधान, मिलन और विरह की मनोदशाओं का विलक्षण वर्णन, अभिव्यक्ति में व्यंजना और वक्रोक्ति का निवेश देखना हो तो उदाहरणों की कोई कमी नहीं होगी। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का इतना विदग्ध उपयोग कवि ने किया है कि पाठक अभिभूत हो जाता है। अगर ब्यौरे में नहीं जाएं तो विद्यापति के कौशल की वानगी के बतौर कुछ उदाहरण याद किए जा सकते हैं। जैसे एक इस प्रकार, सारंग नयन नयन पुनी सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करति मधुपाने। इसी तरह दूसरा उदाहरण, सरस वसंत समय चल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपन हो रूप बचन इक भाषीय, मुख से दूरी कर तीरे। तीसरा दृष्टांत, सोनी सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोय आज, बिनति करहु सुस हेलिनी रे, मोहिदे ही अगी हर साजी। और अंत में शिव भक्त कहे जाने वाले विद्यापति की उक्ति, आंचर झांपल कनक महेश।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता हिंदी भाषा और साहित्य। वार्ताकार थे डॉक्टर विद्या भूषण।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, 8:45 पर लोक रंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और साथियों के स्वर में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा श्री अभिराम पाठक से राग देसी में आलाप और धमार।

10 बजे होगा कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे चेयरमैन बुनकर उद्योग सोसाइटी और मांझी के श्री अनवर अहमद से। विषय होगा बुनकरों की समस्याएं और समाधान। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने। दिन के 12 बजे सुनिएगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। इसमें भेंट वार्ता का विषय होगा बच्चों के मानसिक विकास में अभिभावकों की भूमिका।

शाम 7:15 पर आदिवासी अखड़ा में आज आप सुनेंगे उरांव भाषा में कार्यक्रम। आठ 8:10 पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित सियाराम तिवारी से ध्रुपद गायन। इनसे आप सुनेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा

0: ये आकाशवाणी रांची है। अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: सुनिए, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

0: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है।

0: सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के

0: सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। 18 जून को होगा मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का आगाज। झारखंड समेत देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्य में अवैध खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई चिंता। राजस्व और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 6 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। 3 और 4 जून को 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और जामताड़ा में आयोजित 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल में रामगढ़ की टीम को हराकर रांची ने विजेता ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे।

0: अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: हजारीबाग जिले में अवैध खनन, लॉटरी और नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और स्थानीय सांसदों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राजस्व और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
2: युवा नशे की लत में आकर वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी लगता है जिस तरह से सरकार को युद्ध स्तर पर इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए शायद नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों का कुछ और ही मंशा है, चीज ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे आपने बालू कोयला तस्करी की बात की तो ज्यादा ध्यान इस ओर होता है, लॉ एंड ऑर्डर और जो नशाखुरानी की बात है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ आज ओरमांझी क्षेत्र को बड़ी सौगात देंगे। वे 1,25,00,000 रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण FAQ जारी किए हैं। इसके तहत मतदाताओं और अधिकारियों के लिए 30 जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कल एक जागरूकता रैली निकाली। इसमें छात्रों और शिक्षकों ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो के फुसरो में एक गर्भवती महिला की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
3: घटना इतनी बड़ी हो गई, इतना लोगों ने इसको हल्ला करना चालू किया, लेकिन राज्य सरकार के काम में भूल तक नहीं। अंत में हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर यह अपराध के अपराधी जिन्होंने अपराध किया है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते तो हम बोकारो जिले को चक्का जाम करेंगे। तब आनंद फानंद में 6 लोगों को जनावर लोग थे उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अभिषेक बनर्जी को बेहतर इलाज के लिए झारखंड भेजने का आग्रह भी किया है।
4: हाँ तो तब हो गया, बताइए, वो सांसद हैं और MP साहब जो इलाज कराने के लिए कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो तुरंत डिस्चार्ज कर देता है, कहता नहीं नहीं सर हम नहीं रखेंगे। तो हमने निर्णय लिया है, हमने आग्रह किया है ममता दीदी से कि ममता दीदी जान माल आप लोग का सेफ नहीं है बंगाल में, आप इमीडिएट अभिषेक बनर्जी को झारखंड भेजिए, मैं उनको सुरक्षा दूंगा और मैं समुचित इलाज करूंगा।
0: प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थी। 50 से 70 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा को कई कालजयी गीत देने वाली सुमन जी ने

0: मोहम्मद रफी सहित कई दिग्गजों के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके निधन पर देश की कई हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में 6 जून तक गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 और 4 जून को आकाशीय बिजली गिरने तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने आम नागरिकों और किसानों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। फाइनल मुकाबले में रांची की टीम ने रामगढ़ को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि साइबर डीएसपी अमित रविदास ने विजेता और उप विजेता टीमों को कप प्रदान कर सम्मानित किया। जामताड़ा जिला खो खो संघ के पदाधिकारी ने राज्य स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता के सम्पन्न होने पर जामताड़ा जिला प्रशासन, खेल निदेशालय एवं खेल प्रेमियों को धन्यवाद दिया।
1: तमाम खिलाड़ी बहुत अच्छी मेहनत किए, अच्छे खेल खेल का प्रदर्शन किए। विशेष करके गांव की जो बच्चियां हैं वो उठ करके आई, उनके जो प्रतिभा है उसको निखारने का उसको समय मिला। वो जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये डे बोर्डिंग रांची और रामगढ़ के बीच में सीधा मुकाबला हुआ। दोनों टीम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, परंतु अंत में रांची का जीत हुआ।
0: और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने आईपीएल 19 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है आरसीबी फिर चैंपियन, तब 18 साल लगे अब 12 महीने। हिंदुस्तान के शब्द हैं आम आदमी बनकर रांची की सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री। प्रभात खबर की सुर्खी है एसआईआर में जन्म तिथि और निवास से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है आयोग। और दैनिक जागरण के अनुसार आज रिम्स के नर्स व कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, 18 जून को होगा मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का आगाज। झारखंड समेत देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्य में अवैध खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई चिंता। राजस्व और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 6 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। 3 और 4 जून को 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और जामताड़ा में आयोजित 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल में रामगढ़ की टीम को हराकर रांची ने विजेता ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश हम गंदा नहीं करेंगे।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी रांची है, मीडियम वेव है 546.45 मीटर और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। लोक रंग लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नागपुरी लोकगीत, कलाकार हैं जानकी देवी और साथी।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम रस रंजन।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आज का हमारा ये रसरंजन प्रोग्राम केंद्रित है पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर। कल ही 31 मई 2026 को मुंबई में 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये अपने पीछे हिंदी और भारतीय संगीत की एक समृद्ध विरासत छोड़ गई। हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन कल्याणपुर भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही। इनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। इनका नाम था सुमन हिम्माडी। इनका परिवार 1943 में मुंबई आ गया, जहां इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। सुमन कल्याणपुर को बचपन से ही संगीत और चित्रकला में रुचि थी। इन्होंने मुंबई के सेंट कोलंबा स्कूल और बाद में सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की। संगीत की शिक्षा पंडित केशव आभूले, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और अन्य गुरुओं से प्राप्त हुई।

सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक में फिल्मी गायन शुरू किया। इनकी आवाज की मधुरता और स्वर साम्य के कारण कई बार श्रोताओं ने इन्हें लता मंगेशकर समझ लिया। 1960 और 70 के दशक में इन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

नहीं, हिंदू के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं में गाने गाए। कई भक्ति रस के गाने भी इन्होंने गाए।

सुमन कल्याणपुर का विवाह 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रमनंद कल्याणपुर के साथ हुआ। इसके बाद इनका नाम सुमन कल्याणपुर हो गया। इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड इन्हें मिला 2009 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिला इन्हें 2023 में और मिर्ची म्यूजिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया 2022 में। लोगों का प्यार मिलता रहा और एक पार्श्व गायिका के रूप में इन्होंने अपनी पहचान को बरकरार रखा।

भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्ण में युग की प्रमुख गायिकाओं में सुमन कल्याणपुर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी मधुर आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। कई गाने इनके लोकप्रिय हुए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना ना करते प्यार जो अभी अभी आपने सुना, तुमने पुकारा और हम चले आए, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा, दिल ने फिर याद किया, अझू ना आए बालमा। इस तरह से अनेक गाने जो इन्होंने गाए वो आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं।

एक बार पुनः हम पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये कामना करते हैं कि इनके दुखी परिवार जनों को ढाढ़स मिले इस दुख की घड़ी में। इसी के साथ आज का रसरंजन प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है श्री अभिराम पाठक का गाया राग देसी में आलाप और धमार। बोल हैं उधो तुम जाय कहो। संगत करने वाले कलाकार हैं हारमोनियम पर संचाली नाग, पखावज पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री राम बच्चन पाठक।

श्री अभिराम पाठक का गाया। ये था राग देसी में धमार। संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर संचाली नाग, पखावज पर थे श्री राम बच्चन पाठक।

0: ये आकाशवाणी रांची है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ साथ चलें।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कार्यक्रम आओ साथ चलें के साथ एक बार फिर मुखातिब हूं मैं कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा। करती हूं आपका स्वागत, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, समाज या देश के हर वर्ग के विकास हेतु सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और हम इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारे बुनकर भाई बहनों के कार्य बेहद सराहनीय हैं। इनके लिए कई संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भी विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, हस्तकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी सामानों एवं पूंजी हेतु सहायता प्रदान करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य भी है। श्रोताओं, बुनकरों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उनमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जो जिला स्तर की योजनाएं हैं, और फिर राज्य स्तरीय योजनाओं में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमियों, स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग, फिर कबीर बुनकर पुरस्कार योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, स्पेशल प्रोजेक्ट, प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण, युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम और योजनाएं इत्यादि शामिल हैं। सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संस्थाएं, कई संगठन हमारे बुनकर समाज के उत्थान में लगी हुई हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए हमारे बुनकर भाई बहन आज विकास की ओर बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं छोटा नागपुर बुनकर सोसाइटी के चेयरमैन श्री अनवार अहमद अंसारी। इनसे हमारे बुनकर भाई बहनों के विकास हेतु चलाई जा रही इस संस्था द्वारा अनेकों कार्यक्रम संबंधी बातें हुई, आइए सुनते हैं ये बातचीत। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम किस तरह वीवर्स के लिए यानी हमारे बुनकरों के लिए विकास हेतु काम कर रहा है और कब से ये कोऑपरेटिव, ये यूनियन चलाया जा रहा है यहाँ पर?
1: ये 1978 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसके फाउंडर मेंबर में से श्री जहूर अली साहब थे और अब्दुल रजाक अंसारी साहब थे, और अभी हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का एक भी फंड नहीं है। जब बिहार गवर्नमेंट हुआ करता था तब करीब पूरे बिहार में, उस वक्त बिहार हुआ करता था, झारखंड भी बिहार में था, तो उस वक्त 6 एपेक्स बॉडी था इस टाइप का। उसमें से एक रांची ये था और एक भागलपुर था, एक सिवान था और एक बिहार शरीफ था और एक आई थिंक पंडोल था शायद। तो गवर्नमेंट ने इन 6 को शेयर कैपिटल दिया था 70-72 लाख रुपए पर एपेक्स बॉडी। सब सोसाइटी को जितने भी एपेक्स बॉडी है समीक्षा किया गया तो कोई काम नहीं किया था एक्सेप्ट रांची। रांची छोड़ के बाकी जितने भी थे सारे लोग पैसा लेके पैसा को इधर उधर लगा दिए, अपने मत में लगा दिए। और उसमें से जो रांची छोड़ के बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे सुपरसीड हैं अभी भी। एक रांची ही था जो बच गया। रांची इसलिए सुपरसीड नहीं हुआ कि हमारे जो फाउंडर थे अब्दुल रजाक अंसारी साहब उस वक्त थे, फ्रीडम फाइटर भी थे वो और मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो सरकार से पैसा लिया है वो पैसा हमने बुनकरों के इसमें हित में काम किया, मैं अपना कमाया हुआ पैसा 70-72 लाख रुपया हमारे जो फाउंडर थे वो गवर्नमेंट को उसी वक्त वापस कर दिए। बाकी कोई लोग वापस नहीं कर सका, सबका सुपरसीड हो गया। तो ये जो ये रांची छोनापुरी हैंडलूम जो है ये बचा, ये कभी सुपरसीड नहीं हुआ। इसमें जितने भी फंड जो गवर्नमेंट के आए थे वो एक बार में ये अब्दुल रजाक अंसारी साहब जो हैं वो वापस कर दिए गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट उस वक्त बिहार। तो इसके वजह से ये रांची बच गया, अब बाकी किसी का बचा नहीं, सब लोग सुपरसीड हो गया। ऑर्डिनेंस असेंबली में लाके उसको पास कर दिया गया कि सबको सुपरसीड कर दिया। उसके बाद हम लोग हमारे से उस वक्त मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से उस पीरियड में 105 सोसाइटी प्राइमरी सोसाइटी एफिलिएटेड था, 105। काम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही अच्छा काम। पहला एपेक्स बॉडी था, झारखंड तब तक अलग हो चुका था 2000 में, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ था, कुछ प्राइमरी सोसाइटी का भी गलती से, कुछ अपने खामियां से। उसके बाद फिर हम लोग इसको और बहुत कोशिश किए कि नहीं हम लोग करें। अभी हम लोग के पास 72 सोसाइटी है, 72 सोसाइटी इस ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड है, यानी पूरे साउथ छोटनागपुर और नॉर्थ छोटनागपुर और पलामू प्रमंडल मिला के 72 सोसाइटी। उसमें से प्रायः सभी लोग काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं। हम लोग बहुत उन लोग को काउंसलिंग कर रहे हैं, अभी 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ, 2 साल हुआ हमको बने हुए चेयरमैन, तब से मैं एक ही काउंसलिंग करता हूँ कि नहीं आप लोग लूम चलाओ, हमसे आप यार्न ले जाओ। और ये हम इसमें सक्सेस हुए, हम इसमें सक्सेस ये हुए कि अब हमारा प्रोडक्शन बीच में जो बंद हो गया था वो प्रोडक्शन अब मेरा आ रहा है करीब 1.5 साल से, और NHDC से मैं यार्न लेता हूँ, और NHDC से यार्न लेके मैं अपने बुनकरों को मैं देता हूँ। और ये NHDC से फायदा इतना होता है कि हमको सब्सिडी रेट में यार्न मिल जाता है, लेकिन हमको गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, हम सिर्फ अपना पैसा से करते हैं सारा पैसा से। जब हाजी अब्दुलरजाक अंसारी साहब थे चेयरमैन, तो वो बहुत मेहनत किए, इस जगह को बहुत ऊंचाई पर ले गए। उसके बाद मंजूर अहमद अंसारी साहब आए, चेयरमैन बने। मंजूर अहमद अंसारी साहब भी अपने स्तर से बहुत भरसक प्रयास किए और बहुत सक्सेस भी हुए। उसी पीरियड में जो फाउंडर थे अब्दुलरजाक अंसारी साहब, उनका सपना था कि नहीं इस इलाके में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो, ये उनका सोच था। सोच ये था कि जितने भी ट्राइबल और मुस्लिम, इस पूरे इलाके में दो ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, ट्राइबल और मुस्लिम, तो सब लोग रात में आंधी तूफान में सब लोग आ जाते थे कि नहीं मेरी बीवी बीमार है, मेरी बीवी का डिलीवरी केस है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, तो गाड़ी हमको दे दीजिए आप हमको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो वही सोच का था कि उसी सोच को लेकर के वो चले, क्यों नहीं हम ही हॉस्पिटल यहाँ बना दें, मेरे पास अपना संस्था में पैसा है बहुत।

0: उस वक्त मेरे पास बहुत पैसा था, तो वही 2 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया में हम लोग हॉस्पिटल बनाए जो आज खड़ा है, अपोलो हॉस्पिटल। और उसके बाद एक भी फंड नहीं है, और अभी उसको जब हम लोग 20 साल चलाए अपोलो के थ्रू उस हॉस्पिटल को सक्सेसफुल और अच्छा से चलाए, कॉपरेटिव सेक्टर में पूरे देश में ये पहला वीवर्स का हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहला। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अचीवमेंट की बात है। वीवर्स बुनकरों के लिए अचीवमेंट है, इस राज्य के लिए अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ा काम किए, एक देहात में हम लोग सुपर स्पेशलिटी खोल दिए। आज हॉस्पिटल का जो काया पलट था रांची में, वीवर्स कम्युनिटी ने चेंज किया और लगन डेडिकेटेड होके इस पूरे इलाके में पूरा ये एजुकेशन हब बन गया, मेडी विलेज हब बन गया, कई नर्सिंग कॉलेज बन गया। ये सब बुनकरे से इसी रीजनल से हुआ, तो यहाँ के लोगों के लिए तरक्की हुआ ना, ये हुआ। और अभी जो बुनकरों का जो हालात है यहाँ पर झारखंड में, एक एपेक्स बॉडी और बना 2006 में जो गवर्नमेंट ने बनाया झारक्राफ्ट। तो झारक्राफ्ट से शुरुआती दौर में जब झारक्राफ्ट बना तो उसमें जो MD थे उन्होंने काम किया, उसके बाद कोशिश किया कि नहीं इसको हम आगे करें। वीवर्स लोग का काया पलट करने की कोशिश बहुत हुआ, अगर माल लेके आए और उस दिन जमा कर दिए और उसी दिन पेमेंट मांगते हैं अगर कोई जरूरी के हिसाब से तो वो दे दीजिए, ऐसे मेरा टाइम बाउंड है 1 महीना का। अभी हम लोग और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारे वीवर्स को इलाज यहाँ पर डिस्काउंट रेट पर होता है शुरू में, कि 70% वीवर्स को डिस्काउंट होगा जो हमारे से एफिलिएटेड है, और एवरी ईयर उसकी समीक्षा होती है। फिर अभी मार्च में हम लोग समीक्षा करेंगे, और हमारा जो टारगेट है हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीवर्स इलाज कराएं यहाँ पर। ठीक है, उतार चढ़ाव सब होता है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट, मेरा सिक पड़ा हुआ था तो उसमें हम उसको शुरुआत किए, और शुरुआत किए तो हम सक्सेस भी हुए। उसके बाद फिर उसमें गवर्नमेंट का 2011 से इधर इक्विपमेंट पड़ा हुआ था बाहर में, तो वो इक्विपमेंट को हमने, तो बाद में फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं आप इसको चलाइए, ये हमारा है, ठीक है, हम आपको चलाने के लिए दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन वहाँ हो चुका है, और कुछ जो मशीन है उसका इंस्टॉलेशन बाकी है, 1.5 महीना और लगेगा। तो फुल फ्लेज हमको लगता है कि मार्च एंड तक हो जाना चाहिए, तो वो एक अच्छा काम है ये। उसके बाद फिर हमने यहाँ पावर लूम लगाया, अभी डेमो के लिए मैं लगाया हूँ पावर लूम, ताकि हमारे बुनकर जो आते हैं दूर दराज से सब लोग आके देखे और उससे प्रोत्साहित हों, ताकि वो अपने प्रोत्साहित होकर अब खुद बोले कि नहीं हम भी लगाएंगे। इसलिए कि हैंडलूम प्रोडक्ट में क्या होता है कि दिन भर में अगर आप 4 चादर बीनते हैं, 2 चादर, तो उसमें 10 चादर निकल जाएगा, तो ये फर्क पड़ता है। और फिनिशिंग भी उसका अच्छा होता है, फिनिशिंग तो हैंडलूम का भी अच्छा होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा पावरलूम का फिनिशिंग होता है। अभी चल रहा है, अभी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग बहुत इत्मीनान हैं और अच्छे हैं। हम लोग अपने काम पर बहुत ये हैं कि नहीं इसको जैसे भी हो सुधारें, और अभी इस जगह पर, इस मुकाम पर अभी पहुंचे हैं।
1: बहुत सही बात बताई आपने, और वीवर्स यानी बुनकरों से संबंधित जितनी भी बातें आपने बताई कि यहाँ एक हॉस्पिटल खोला गया है और इन लोगों के विकास के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है ये यूनियन। आपसे एक बात और मैं अनवर जी जानना चाहूंगी कि जितने भी बुनकर यहाँ इस यूनियन से जुड़े हैं तो तकरीबन कितने बुनकर होंगे और इनके परिवार की क्या स्थिति है, ये किस तरह से स्वरोजगार हेतु पहल कर रहे हैं?
0: हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो बुनकर जुड़े हुए हैं करीब करीब हम समझते हैं कि लगभग 14 से 15 हजार बुनकर होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं, और पूरे झारखंड राज्य में 30 हजार बुनकर होंगे, 14 मतलब दुमका वगैरह लेके, गोड्डा वगैरह लेके हमारे से जुड़े हुए हैं 14 से 15 हजार बुनकर। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि बुनकरों को जितना फायदा हो सके फायदा हो, उसके लिए सरकार से उन लोगों का अनुदान भी दिलवाते हैं हम लोग। हम लोग उसको लेते नहीं है, अब डायरेक्ट उनका RTGS पे चला जाता है, उनके प्राइमरी सोसाइटी का RTGS मेरे अकाउंट में RTGS के थ्रू चला जाता है। तो हम लोग वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी बहुत अभी प्रोत्साहित हम करते हैं, तो उन लोग काम करने के लिए माने एग्री हुआ है और करता है, काम कर रहा है, सब लोग बीन के ला रहा है। हमारा सारा माल जो भी बीन के लाता है मेरा

0: माल रुकता नहीं है, सारा माल बिक जाता है। करीब 9 मोबाइल वैन है और कई जगह सेंटर है, हम खोल कर रखे हैं उस सब में शोरूम सब, और कई जगह अभी प्रस्तावित है एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने का। उसमें एयरपोर्ट है, उसमें रांची है, उसमें जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है, प्लस लखनऊ है, दिल्ली है, कलकत्ता है, इतना जगह हम लोग का प्रस्तावित है कि एक्सक्लूसिव शोरूम हम लोग करें, हाँ खोले। तो इसको भी हम लोग, हम समझते हैं कि 1-1.5 साल में कंप्लीट करेंगे। दूसरा ये है कि बुनकरों के लिए एक हम लोग और फायदे का एक स्कीम अभी लाया हूँ, बुनकर वेलफेयर फंड। तो बुनकर वेलफेयर फंड में हमको ये करना है कि जितने भी बुनकर की लड़कियां हैं उनकी शादी में मदद करना, और जितने भी बुनकर के बाल बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको तकनीकी शिक्षा में मदद करना। ये अगर मान लीजिए वो फीस देने नहीं सक रहा था, 50% हम फीस दे दिए, अब किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है पैसा की वजह से, बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जो पैसा की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम मदद करेंगे। तो ये एक सोच था हमारे फाउंडर अब्दुल रजाक अंसारी साहब का, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए हैं, अभी ऑलरेडी बन गया है। मैं चाह रहा हूँ ये कि एक ऐसा ये बने कि ये परमानेंट हो जाए, और हमारे जो निबंधक महोदय हैं, रजिस्ट्रार महोदय, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि इसको आप देखिए, और इसमें उन्होंने कहा था हमको कि खाली आप अनुमोदन कर दीजिए, तो वो भी हो जाएगा, तो मैं उसको चालू कर दूंगा, उससे बुनकरों को बहुत फायदा होगा। वो मेरा बहुत ड्रीम ये है और मैं चाहता हूँ कि बुनकर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
1: अनवार साहब, इतने हजारों हजार की संख्या में व्यूवर्स इस यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो इनके रहने की, इनके खाने की भी व्यवस्था क्या इस सोसाइटी के द्वारा ही की जाती है?
0: नहीं, ऐसी कोई बात, उन लोग अपना रहते हैं, अपना घर है उन लोगों का, घर जैसा भी हो, गरीब लोग है तो जैसा घर है वैसा है, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं अगर मदद वगैरह की जरूरत पड़ती है तो हम लोग करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है करें। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी डिविडेंड मैं दिया तो बुनकर को ही काम आया, पिछले साल जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कराया और सब लोग उसमें ये किया, सब लोग लिया और सब लोग ये किया, यही हम लोग मदद करते हैं कि ज्यादा ज्यादा, तो उस वक्त बुनकरों को बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा।
1: तो एक चेयरमैन होने के नाते इस सोसाइटी के, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आपके बुनकरों से कि वो किस प्रकार आपका सहयोग करें ताकि इस यूनियन को और ज्यादा प्रगति के शिखर तक पहुंचाया जा सके?
0: मैं जब से बना हूं चेयरमैन तब से मैं एक ही बात बोलता हूं सारे बुनकर भाइयों को कि जो हमसे संबंध है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से जो संबंध है, उन लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूं कि मेरा एक डिमांड है कि आप लोग लूम चलाओ, और आपका 10 डिमांड मैं मानने के लिए बैठा हुआ हूं। मैं बार बार हर मीटिंग में ये बोलता हूं इनको कि मेरा एक डिमांड, आपका 10 डिमांड।
1: तो आपके बुनकर जो भाई बहन हैं जो इस यूनियन से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो दूर दराज के इलाकों में हमारे बुनकर भाई बहन हैं जो हुनरमंद हैं, काफी अच्छे इससे जुड़े हुए हैं, उनको आप इस सोसाइटी से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सिर्फ रांची के बुनकर हमारे से जुड़े हुए नहीं है, हमारे नॉर्थ छोटनागपुर और साउथ छोटनागपुर, ये दोनों जगह के बुनकर हैं, और पलामू परमंडल के बुनकर हैं, तो ये सारे लोग हमसे बेनिफिट है। जितना नॉर्थ छोटनागपुर और साउथ छोटनागपुर में है हम वही लोग को कर रहे हैं, उन लोग सब लोग हमसे जुड़ा हुआ है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। गोड्डा वगैरह तो अलग है, तो उन लोग अपना अलग क्लस्टर कर लिया है, उन लोग अलग क्लस्टर के थ्रू अपना काम करता है, उन लोग भी हमारे संपर्क में हैं, जहां मदद होती है सरकार में तो हम उन लोग को भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं करते हैं। अगर मेरा 10 बुनकर का जा रहा है कुछ, तो हम उन लोग को भी उसमें शामिल कर देते हैं, वो भी बुनकर भाई हैं तो उनके लिए भी हम करते हैं, और मेरा काम उन लोग देखता है तो उन लोग को पसंद आता है।
1: तो बुनकरों का विकास और अच्छे से हो, इस यूनियन का भी विकास अच्छे से हो, इसके लिए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मेरा बस एक ही अपेक्षा है और एक ही सुझाव है हम देते हैं इन लोग को कि आप लोग लूम चलाइए, जब तक लूम नहीं चलाइएगा तब तक विकास नहीं होगा। लूम तो आपको चलाना पड़ेगा, टाइम से टाइमली वेजेस देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, डिविडेंड देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ इधर। मैं बार बार उनको हर मीटिंग में बोलता हूँ मेरा एक डिमांड, आपका 10 डिमांड बुनकरों को, ये पब्लिकली नारा है, मैं नारा दे के बात किया हूँ उन लोगों को और बराबर बोलते रहता हूँ, इसीलिए इतना सोसाइटी अभी काम कर रही है, सब लोग प्रोत्साहित हुआ है हमारे काम से, हमारे जो लूम सब, ऑटो लूम सब जो मैंने लगाया हूँ इधर, उस सबसे अभी बहुत आगे जाके जो है ना, बहुत ज्यादा हम इन फ्यूचर जो है प्लानिंग जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बुनकर लोग माने

0: एक एक बुनकर जो है ना इसमें सब इंगेज हो जाए, और ऐसा इंगेज हो, मैं दिल्ली भी गया, मैं कई फैशन डिजाइनर से बात किया, ऑलरेडी उन लोग बहुत इच्छुक है, वो मेरे सामने जर्मनी के एक बायर से भी बात कर लिए हैं, जापान के बायर से बात कर लिए हैं, उन लोग सब लोग इंटरेस्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, तो उसमें हम करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो है, झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका मोमेंटम झारखंड का था, मैं सोचा कि नहीं राज्य का भला हो जाएगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर सब लोग को नौकरी मिल जाएगी, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो मैंने जो हमारा एक अपेक्स बॉडी है, संजय गांधी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, तो वो भी मेरे फाउंडर अब्दुलरजाक अंसारी ही हैं उनका फाउंडर, और उन्हीं का सोच के वजह से आज वो संजय गांधी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल का पैदा हुआ, वो 1981 में। यहाँ पर टेक्सटाइल हब जो है एक बन जाएगा, कई कंपनी यहाँ पर आ रही हैं, अब उसमें से एक कंपनी, एक ऐसा कंपनी यहाँ पर अभी आई है, तो उसका ओपनिंग होने का कगार पर है, आजकल में हम समझते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये हो जाएगा, एक तो झारखंड मोमेंटम में जो सबसे पहला उद्घाटन हमारे यहाँ से हुआ, शिलान्यास सब जगह हो गया है, लेकिन हमने सबसे पहला उद्घाटन हम लोग किए, स्मृति ईरानी महोदया आई थी, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री, और मुख्यमंत्री खुद आकर उद्घाटन करके गए हैं ओरिएंट क्राफ्ट को। तो ओरिएंट क्राफ्ट जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मार्क्स एंड स्पेंसर का, उसका कपड़ा यहाँ बनता है, कभी सोच नहीं सकते हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर का कपड़ा है, ये इरबाई में बनता है हमारे यहाँ, और यहाँ से बन के जाता है, तो ये बहुत खुशी होता है कि नहीं हमारे यहाँ सब बन रहा है इतनी बड़ी कंपनी का। तो वैसे ही अभी बड़ी बड़ी कंपनी इधर आ रही है, तो जमीन हम लोग भी आम सभा करके ही दिए गवर्नमेंट को, और लीज एग्रीमेंट पर दिए हैं, बट अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है, एमओयू साइन होगा तो फिर देखेंगे जैसे क्या होता है, क्या करना है उसके हिसाब से होगा। ये सब बुनकर को ही फायदा होगा और आसपास के लोगों को फायदा होगा। प्राथमिकता के आधार पर बुनकर भाइयों को और जमीन देने वाले के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, कि जमीन जो दिए हैं उनके आश्रितों को और बुनकर के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। क्या मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है, वो सोच अगर ये इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है यहाँ पर, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो इसके वजह से फिर हम आगे बढ़े भाई, लेकिन राज्य के लिए कुछ काम है तो सब, तो भाई काम एक अच्छा हो रहा है तो हम उसको तय करेंगे ना, अब उसमें एग्री हुए हम भाई, यहाँ पे सब सारे बुनकर भाई को फायदा होगा, सारे लोग को, यहाँ के लोगों को, चाहे जो भी जमीन दिया है उसके आश्रितों को फायदा होगा, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े और करके दिखलाएं हम जैसे भी हो। तो ये तो अच्छा एक विजन था कि अब यहाँ पर टेक्सटाइल हब बन जाए, यहाँ से लेकर के ब्लॉक चौक और मांझी तक वहां भी दिया गया है जमीन, तो ये सोच अच्छा है, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है।
1: बिल्कुल सही बात है अनवर जी, आपने जितनी भी बातें बताई ये सारी बातें बुनकरों के विकास से संबंधित थी, और जितने भी विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं इस यूनियन के द्वारा वो भी बेहद सराहनीय है। अभी हमारे साथ कार्यक्रम में थे अनवर अहमद अंसारी, चेयरमैन बुनकर कोऑपरेटिव यूनियन। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। श्रोताओं ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में बदलाव के इस दौर में एक और बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी नए उत्पाद व तकनीकी का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होती हैं, मशीनों के उपयोग से पर्यावरण पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने हस्तशिल्पी और बुनकरों को बचाना और उनके काम को बचाना बेहद जरूरी है। देश में हाथ का कार्य और हुनर बचा रहे तभी गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होगी। भारत की इस खूबसूरत संस्कृति को बचाए रखने के लिए न केवल बुनकरों बल्कि कच्चा माल उत्पादकों, दैनिक रूप से सामान की आपूर्ति करने वालों के साथ साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो श्रोताओं इस बातचीत के बाद अब आइए आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही हमारी कार्यक्रम आओ साथ चलें का वक्त भी अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की हम सफर सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। पीडीएम 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची। जोहार रांची लेकर आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त, कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। तो सबसे पहले बातें करेंगे हम हौसले की। जी हां, आज के सुविचार के साथ जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जीवन की राह में चुनौतियां तो हर कदम पर मिलती हैं, है ना? लेकिन जो अपने हौसलों को थामे रखते हैं वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों, तब कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है और सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जिंदगी में हौसले को शामिल कर लेना चाहिए, हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। चलिए थोड़ी बातचीत मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम इन दिनों कुछ अजीब सा खेल खेल रहा है। कभी तेज़ धूप हो जाती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बरसात होने लगती है। तो इसके मौसम को लेकर अगर कुछ खबरें सामने हैं तो वो आपको ज़रूर बता दूं। झारखंड के लिए मौसम को लेकर राहत भरी खबर है। झारखंड सहित पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य के करीब बारिश होने के संकेत मिले हैं। वहीं देश में अन्य जगहों पर इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है, और ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मानसून 2026 के दूसरे चरण को लेकर दी गई है। और आपको बता दें कि पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में और पूर्व मध्य भारत से सटे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा की संभावना जताई गई है। जून में अगर झारखंड की बात फिर से आपको बता दूं कि झारखंड के लिए राहत की बात यह है कि जून में राज्य में हीट वेव यानी लू के चलने की संख्या जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। और वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक हीट वेव के दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने यह भी बताया है कि जून में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होगी और सामान्य से अधिक तापमान भी रहने की संभावना है। तो भाई, मौसम का आनंद लेते रहना है। मौसम का तो मिजाज ही होता है बदलने का। तो जैसे जैसे मौसम हमें इशारा दे रहा है, संकेत दे रहा है, वैसे वैसे हमें भी अपने दिनचर्या में सुधार लानी होगी और ऐसे जीना होगा कि बिल्कुल हम स्वस्थ रहें, चाहे मौसम कोई भी हो, है ना। तो चलिए आपको सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

तो चलिए अब बात करते हैं टीम रजत के स्वर्णिम प्रदर्शन के बारे में। जी हाँ, गेंदबाजों के बाद कोहली का जलवा हम सब ने देखा। आपको बता दें कि चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली नाबाद 75 रन के अर्धशतक से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम पर कर लिया है और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने दर्शकों को खुशियां मनाने का मौका दिया है। आरसीबी ने अपने आक्रामक खेल से टूर्नामेंट में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और इसका समापन एक और ट्रॉफी से किया। आपको ये भी बता दें कि आरसीबी ने पिछले चरण में 18 साल बाद पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और रविवार को कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात टाइटंस को 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। 6 दिन में तीसरे स्थल पर ये तीसरा मैच खेल रही गुजरात टाइटंस पर थकान हावी दिखी और इसके बाद कोहली 42 गेंद 9 चौके और 3 छक्के और वेंकटेश अय्यर 32 रन की अच्छी शुरुआत दिलाई और ये जीत दर्ज की है। विराट कोहली ने अपना सबसे तेज अर्धशतक इसमें जड़ा है, तो हम बधाई देते हैं विराट कोहली को, उनकी पूरी टीम को, और आपको सुनाते हैं ये नगमा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। श्रोताओं, आप सबको ये पता ही होगा कि दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और मैथिली गीतों को भी उन्होंने स्वर दिए थे। तो हम अपने पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। आपको ये जरूर बता दें कि हिंदी सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का रविवार शाम मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वो 89 वर्ष की थी और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। रात करीब 8 बजे अंतिम सांस ली। 1960 और 1970 के दशक में अपनी मधुर और सुरीली आवाज से उन्होंने संगीत जगत में अलग पहचान बनाई थी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए, और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, ओडिया और अन्य भाषाओं में भी हजारों गीत गाए। उनकी आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर से की जाती थी, हालांकि वो स्वयं इस तुलना को स्वीकार नहीं करती थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। उनके बारे में

दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी जो नहीं नहीं अब हमारे बीच, उन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनके बारे में ये भी आपको बताते चलें कि जनवरी 1937 को 28 जनवरी के दिन अब विभाजित भारत के ढाका और अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं भवानीपुर में हुआ था। उनका मूल नाम सुमन हेमाडी था। वर्ष 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया और बचपन से ही संगीत और चित्रकला में रुचि रखने वाली सुमन कल्याणपुर ने पंडित केशवराव भोले सहित कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली और बाद में प्लेबैक गायन को अपना करियर बनाया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2023 में पद्म भूषण से तो उन्हें सम्मानित किया ही गया, कई राज्य स्तरीय और संगीत सम्मान उनको दी जा चुकी थी। ये सम्मान उनके लंबे और समृद्ध संगीत सफर की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति माना गया। तो चलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं का गाया हुआ एक और गाना आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर। यानी आज है 1 जून, और आज ही के दिन यानी 1 जून के दिन क्या क्या घटित हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, आइए इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, साल के 6 महीने का ये पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। नेपाल में आज के दिन एक बड़ी घटना ने देश के पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस दिन नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। राजा के भाई ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देश के नए राजा बने। 1 जून भारतीय

श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 1 जून 1911 को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार और दादा मुनि के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जहां मशहूर दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का भी जन्म हुआ था। साथ ही आज ही के दिन 1 जून 1842 को महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। आपको ये भी बताते चलें कि 1 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 1 जून को मुख्य रूप से विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे और वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाए जाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2001 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डेयरी उद्योग और मानव आहार में दूध के महत्व को उजागर करना है। साथ ही अगर वैश्विक अभिभावक दिवस की बात करें, तो ये दिन बच्चों के लालन पोषण और उनके विकास में माता पिता यानी अभिभावकों के निस्वार्थ योगदान और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो और भी बातें हैं आज के दिन की, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं ये नगमा।

बिल्कुल, चल कहीं दूर निकल जाएं, और ऐसे मौसम में लोग जाना तो चाहते ही हैं हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन की बात करते हैं, कहाँ जा सकते हैं, या प्लान आपने बनाया है, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। नेतरहाट आप सभी जानते हैं, छोटा नागपुर की रानी। जी हाँ, झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। घने जंगलों, मनमोहक झरनों और शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है नेतरहाट। यहाँ के मुख्य आकर्षण के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट है, जहाँ से डूबते सूरज का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। कोयल व्यू पॉइंट है, जहाँ नेतरहाट से मात्र 3 किलोमीटर दूर यहाँ से कोयल नदी और आसपास की हरी भरी घाटियों का नज़ारा मिलता है। ऊपरी और लोअर घाघरी जलप्रपात आप देख सकते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित ये झरनी प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। ये औपनिवेशिक काल का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बोर्डिंग स्कूल है, जो अपनी बेहतरीन शिक्षा और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दूरी की अगर बात करें, रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेतरहाट। नेतरहाट में रुकने के लिए झारखंड पर्यटन का होटल प्रभात बिहार एक अच्छा विकल्प है, जो बस पड़ाव के नज़दीक ही है। इसके अलावा वन विभाग के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, और बहुत सारी अगर और जानकारियां चाहते हैं तो आप इसके लिए बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए झारखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसका डिटेल देख सकते हैं और प्लान बना सकते हैं नेतरहाट घूमने का।

श्रोताओं, जहां प्रश्न जन्म लेते हैं वहीं विज्ञान का आरंभ होता है। विज्ञान केवल पुस्तकों का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पल में मौजूद होता है। सुबह अलार्म बजने से लेकर रात में मोबाइल बंद करने तक हमारा पूरा दिन विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है, नई गति दी है, नई सोच प्रदान की है, और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो विज्ञान की ही अनगिनत खोजों और आविष्कारों का परिणाम है। अगर विज्ञान की रोचक दुनिया में एक नजर डालें तो कुछ तथ्य हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन कुछ चलिए आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और ये हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में अरबों खरबों परमाणु हैं और इनमें से कई परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा रहे होंगे। अंतरिक्ष में यदि कोई रोते तो आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि चेहरे के आसपास ही तैरते रहते हैं, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। आपको ये भी बता दें कि मधुमक्खियां अपने पंख प्रति सेकंड लगभग 200 बार फड़फड़ाती हैं, इसलिए उनकी भनभनाहट सुनाई देती है। ये तथ्य केवल जानकारी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बताते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड कितने अद्भुत हैं। विज्ञान की बातें करेंगे तो बस करते ही रहेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो चलते चलते लीजिए एक गाना सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत।

0: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आपकी पसंद का पहला गाना हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी, गीतकार हैं मजरू और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को पसंद करने वाले हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्मीन, मोरा अफजाल इब्राहिम। साथ ही इसी नगमे को सुनना चाहते हैं दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राम और प्रांजल राय। साथ ही बाबा बैजनाथ धाम से इसी गाने की फरमाइश भेजी है मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी और रोशनी केशरी। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर से। आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की है। संगीतकार हैं शिवहरि और गीतकार आनंद बख्शी। इस गीत को पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इस गाने को सुनना चाहते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। साथ ही बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी अली अंसारी जी। आप सब सुनना चाहते हैं ये नगमा।

श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम की होस्ट, आपकी दोस्त राजश्री। अगला नगमा हमने चुना है आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर। आप सब हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं आप सब श्रोता। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना फिल्म आदि से। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और इसे लिखा है गुलजार ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। गायक कलाकार हैं येसुदास, गीतकार फोक जामी और संगीतकार राज कमल। इस नगमे को सुनना चाहते हैं आप सब श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गाने को सुनना चाहते हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना येसुदास की आवाज़ में।

अगले गाने की फरमाइश भेजी है गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया भगत। साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और कुवात बिहार से नरगिस जफर। आप सब सुनना चाहते हैं ये नगमा।

श्रोताओं, इसी नगमे के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपने दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं नागपुरी भाषा में।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया बहिन मन के वंदना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि हमरे कर सब सुनवैया बहिन मन बहुत बढ़िया से हो बैं और कुशल मंगल से हो बैं। देखो नी, आजकल कर महिला मन अपन हरेक क्षेत्र में योगदान देवत हैं, चाहे वो कला कर क्षेत्र होवे, चाहे शिक्षा कर, चाहे व्यवसाय कर, चाहे नौकरी कर, हरेक क्षेत्र में वो अपन परचम लहराते हैं। तो इसने एगो बहुत ही बढ़िया संगीत गाने वाली गायिका जेकर की आज एगो अध्याय खत्म होलक, वो है महान गायिका सुमन कल्याणपुर, जिनकर आज निधन हो गलक। उनकर दिवंगत आत्मा के हमर बटले भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कलाकार क्षेत्र में उनकर शानदार योगदान ले भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2023 से उनके सम्मानित करल जा रहे। इनकर यात्रा सुकरची चांदनी और मंगू जैसन फिल्म से शुरू होलक। शराबी शराबी ये सावन का मौसम, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार ना तुम हमें जानो, पर्वतों के पेड़ों पर और निम्बो नीचिया झाड़ा मागे जैसन कै गो सदाबहार गीत में वो अपन आवाज दे लें। मोहम्मद रफी कर संगे उनकर कोलाबरेशन के काफी प्रसिद्धि भी मिलक। सुमन कल्याणपुर अपन करियर में 800 से बगरा गीत गाले और दशकों तक संगीत कर क्षेत्र में अपन शानदार योगदान दिले और अपन एगो अलग पहचान भी बना लें। 28 जनवरी 1937 के अविभाजित भारत कर हिस्सा ढाका में जन्मल सुमन जी हिंदी और मराठी सिनेमा कर सबसे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर बनले और फिल्मी गीत कर अलावे भजन, गजल, मराठी अभंग और भावगीत भी गाले, जे एगो कलाकार के रूप में उनकर बहुमुखी प्रतिभा के देखाले। तो आज उनके हमर बट से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वह चलते चलो सुनब आज हम उनकर बहुत प्रसिद्ध गीत गावल, नाना करते प्यार, जे की फिल्म जब जब फूल खिले से है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारे मन सुन ली गीत, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और वो गीत रहे फिल्म जब जब फूल खिले कर। तो जैसे कि हमरे मन जानी ला कि महिला कर ऊपरे में गोटा परिवार कर जिम्मेवारी होवेला, सेले जरूरी है उमन के भी स्वस्थ रह कर और अपन परिवार के बहुत स्वस्थ रखे कर, और उगर खातिर जरूरी है सही खान पान, फल सब्जी अनाज ये सब तो स्वस्थ रहे खातिर जरूरी है ये है, लेकिन उकर संगे हमरे के दूध भी जरूर पिए के चाहिए, काले कि दूध के एगो संपूर्ण आहार मानल जाएला, जेकर में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और B12 जैसन पोषक तत्व होवेला। दूध हमरे कर हड्डी के मजबूत बनाए और मांसपेशी कर संपूर्ण विकास करे में बहुते सहायक है। तो चलू हमरे मन जानब कि दूध पिए कर फायदा काका है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होवेला, जेकर से हड्डी और दांत दियो के मजबूती मिलेला। इकर में मौजूद प्रोटीन कसरत कर बादे मांसपेशी कर मरम्मत और उके मजबूत बनाए में हमरे के मदद करेला। जिंक और विटामिन हमरे कर शरीर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाएला। रात के अगर सुते से पहले हमरे मन गर्म दूध पीला तो शरीर के आराम भी मिलेला और हमरे के नींद भी बहुत बढ़िया से आवेला। एगो गिलास दूध में पोटेशियम, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन, जेके कि बी विटामिन कहे ना, वो होवेला जेकि सारा दिन हमरे के ऊर्जा देवेला और थकान के भी दूर करेला। लेकिन दूध पिए के लिए हमरे के कैगो बात कर ध्यान भी रखे के चाहिए, जैसे कि एगो स्वस्थ आदमी ले दिन में लगभग 300 से 400 मिलीलीटर दूध पर्याप्त होवेला। जे मन के लैक्टोज इंटोलरेंस या दूध से एलर्जी है, उ मन के दूध कर सेवन करे के नहीं चाहिए, और दूध में अधिका चीनी मिलाइक से हमरे मन के बाचे के चाहिए। तो रौरे मन भी जरूर दूध पियो और अपने के स्वस्थ रखो। तो चलो अब हमरे मन सुनब एगो नागपुरी लोकगीत, यशोदा देवी और संगी मन कर गावल।

0: हाँ तो बहन मन एखन हमरे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मन कर गावल। और चलू अब हम रौरे मन के जानकारी कराब कि छौआ कर मानसिक विकास में अभिभावक मन कर का भूमिका होवेला और इकर बारे में हमरे के बतावे प्रेम प्रकाश पुरी।
1: बच्चों के मानसिक विकास में माता पिता की भूमिका नींव के समान होती है। बच्चे का घर ही उसकी पहली पाठशाला है और अभिभावक पहले शिक्षक। एक सुरक्षित, सकारात्मक और संवादात्मक माहौल देकर अभिभावक बच्चों की सोचने समझने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रित करने का और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानकारी करेंगे प्रेम प्रकाश पुरी जी से, जो हमें बताएंगे कि बच्चों के मानसिक विकास में माता पिता की क्या भूमिका होती है।
2: धन्यवाद मैम।
1: प्रेम पुरी जी, सबसे पहले आप हम श्रोताओं को बताएं कि बच्चों के विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है।
2: तब बच्चों के प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम इससे अगर संक्षिप्त में इसका अनुवाद किया जाए तो इसे हम लोग 5-6 भाग में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि संस्कार और नैतिक शिक्षा, भावनात्मक सहयोग, शिक्षा में सहयोग, स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग, सामाजिक विकास में सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करना हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है। और ये सारी चीजें शुरुआती दौर में माता पिता की ही भूमिका होती है।
1: बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं?
2: बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेम पूर्ण वातावरण, अच्छी शिक्षा, सकारात्मक प्रोत्साहन और उचित पोषणों से भरपूर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। इसे अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो अनुवांशिकी, पोषण, पारिवारिक वातावरण, खेल और गतिविधियां और सामाजिक संपर्क में संचित किया जा सकता है। माता पिता से मिलने वाली जीन बच्चे की मूल बौद्धिक क्षमता और सीखने की गति की नींव रखते हैं। मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन जैसे संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक हैं। फिर हम लोग घर का सुरक्षित, तनाव मुक्त और प्रेम पूर्ण माहौल बच्चे के संवेदनात्मक विकास को बढ़ाता है। माता पिता के साथ सकारात्मक बातचीत मस्तिष्क की तंत्रियाओं को मजबूत करती है। उसके अलावा हमें सामाजिक संपर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार के बाहर अन्य बच्चों और लोगों के साथ मेल जोल से बच्चे का सामाजिक और भाषा संबंधी विकास होता है।
1: प्रेम जी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता बच्चों के सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?
2: माता पिता बच्चों के सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है बच्चों में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने, सहयोग करने, सम्मान देने और समाज के नियमों का पालन करने की क्षमता का विकास होना। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार और आदतों से सबसे अधिक सीखते हैं, इसलिए माता पिता का आचरण बच्चों के सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि माता पिता बच्चों को परिवार के सदस्य, मित्रों, पड़ोसियों के अच्छे संबंध बनाने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें दूसरों के सम्मान करना, बड़ों की बात मानना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सिखाना चाहिए। बच्चों को सामूहिक गतिविधियों, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में भाग लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित और अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता पिता को बच्चों को अपनी बात से विनम्रता से रखने, दूसरों की बात ध्यान से सुनने, मतभेदों को शांति से सुलझाने की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों में ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदारी जैसी सामाजिक गुणों का विकास भी बहुत बहुत आवश्यक होती है।
1: क्या अभिभावकों को शिक्षा में शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए?
2: जैसे कि अभिभावक ही पहली शिक्षक होते हैं हम बच्चों के लिए। शिक्षकों के साथ तालमेल अभिभावकों का जिम्मेदारी होती है। अभिभावक को बच्चों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर हमेशा कार्य करना चाहिए। बच्चों का विकास तभी प्रभावी रूप से संभव है जब घर और विद्यालय दोनों मिलकर उसके सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग करेंगे। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बच्चों के जीवन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनके बीच अच्छा संवाद और सहयोग आवश्यक है। अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय जाकर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और प्रगति की जानकारी भी लेनी चाहिए। शिक्षकों के सुझावों के समझकर उन्हें घर पर लागू भी करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि बच्चे के विकास में किसी विषय में कठिनाइयां हो रही है या उसके व्यवहार में कोई बदलाव दिखाई दे रही है तो अभिभावकों को इसकी जानकारी शिक्षकों को देनी चाहिए ताकि मिलकर उचित समाधान निकाला जा सके।
1: पढ़ाई के साथ साथ अभिभावकों को अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?
2: बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना प्रत्येक अभिभावक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जो बच्चों को अपने कार्य स्वयं करने, निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग बनाता है। आत्मनिर्भर बच्चे भविष्य में अधिक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बनते हैं। अभिभावकों को बच्चों की छोटी उम्र से ही अपने दैनिक कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे अपने सामान व्यवस्थित करना, स्कूल बैग तैयार करना, कपड़े संभालना और छोटी छोटी चीजें। इन इनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर देने चाहिए ताकि उनके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ सके। ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: अभिभावक के कौन-कौन से कर्तव्य हैं और उनमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए जो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं?
2: पहली बात, अभिभावक जैसे हैं उनके बच्चे भी किसी किसी स्तर तक उनके बच्चे भी उनके जैसे ही बनेंगे। तो उनका कर्तव्य बच्चों के जीवन के प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और उचित देखभाल प्रदान करना है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें बच्चों को अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व सिखाना चाहिए। साथ ही बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता को पूरी करनी चाहिए। उन्हें सही और गलत का ज्ञान देना तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना अभिभावक के प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं।
1: अभिभावक में कौन कौन आते हैं और अभिभावक के साथ साथ बच्चों के विकास में समाज की क्या भूमिका है?
2: प्रथम अभिभावक उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके दादा दादी हो सकते हैं, उनके नाना नानी हो सकते हैं, और इनके अलावा बच्चे जहाँ रहते हैं, जिनको हम लोग लोकल गार्जियन के जैसे लोकल गार्जियन बोलते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। उनके मौसा मौसी, उनके अंकल आंटी, कई स्तर पर पड़ोसी भी अभिभावक की भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों के विकास में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज बच्चों को सीखने, सामाजिक व्यवहार विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों, मित्रों, शिक्षकों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से अनेक बातें सीखते हैं। समाज बच्चों में सहयोग, सम्मान, सहानुभूति और सामूहिकता की भावना विकसित करता है। एक अच्छा और स्वस्थ समाज वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करता है। समाज बच्चों को सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों से परिचित कराता है, जिससे वे जिम्मेदार और दर्शक नागरिक बन पाते हैं। समाज इसके अलावा बच्चों की जीवन यापन में भी सहायता करता है, जिसमें बच्चों के कैरियर को भी बनाने में सहायता प्रदान करता है।
1: प्रेमपुरी जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक अभिभावक अपने बच्चों को कैसे सही ढंग से विकास कर सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखन हमरे मन जानकारी कर ली कि छौवा कर मानसिक विकास में अभिभावक मनकर का भूमिका होवेला, और इकर बारे में हमरे के बतात रहे प्रेम प्रकाश पुरी। तो चलू अब हमरे मन सुनब और एगो नागपुरी लोकगीत दीना सी और संगी मनकर गावल।

एखन हमरे मन सुनले ई सुंदर गीत दीना सिंह और संगे मन कर गावल और बही मन हमरे मन तो जानीला कि स्वच्छ हवा स्वच्छ जीवन ले कितना जरूरी है। स्वच्छ हवा ए स्वस्थ और लंबा जीवन जिए कर सबसे पहला शर्त है। शुद्ध वायु फेफड़ा के मजबूत करेला, हृदय रोग कर खतरा के घटाएला और ऊर्जा कर स्तर के बढ़ाएला। तो स्वच्छ हवा कर कैगो लाभ है, जैसे कि ताजा हवा फेफड़ा कर कार्य प्रणाली में सुधार करेला और शरीर कर हरेक हिस्सा में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचाएला। हवा में मिले वाला धूल कण और विषैला तत्व कम रहल से त्वचा स्वस्थ रहेला और उम्र बढ़े कर जो लक्षण है वो भी धीमा हो जाएला। और शुद्ध ऑक्सीजन मस्तिष्क कर कार्य प्रणाली के तेज करेला, जेकर से कि तनाव भी कम होवेला और हमारे कर एकाग्रता भी बढ़ेला। तो बहन मन अब तो हमारे कर जायकर हमारे जायकर बेरा होते, तो अगला सोमवार के रौरे मन कर संगे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृह लक्ष्मी और आज का कार्यक्रम आपने सुना। नागपुरी भाषा में, और इसी के साथ गृहलक्ष्मी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
2: जी,
4: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
2: जी।
4: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
2: जी,
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
2: जी।
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
2: जी।
4: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
2: जी।
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते

0: किताबें रिकॉर्डेड हों
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हों, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई।
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्यधारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है, या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी।
0: और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,

0: ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता

0: सब भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम

0: प्रस्तुत है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprihava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees, state GST at 45,143 crore rupees, and integrated GST at 51,990 crore rupees. Taxable supplies of goods grew 26.9% during the reported period, reflecting domestic demand, while the same for the services sector grew 22.2%, demonstrating structural resilience in domestic consumption. Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification for the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha was also issued today. The polling will be held on the 18th of this month. The counting of votes will take place on the same day. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari was expanded today with the induction of 35 new ministers. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to the new members of the Council of Ministers at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. The legislators sworn in as cabinet ministers include Chapan Dasgupta, Arjun Singh, Tapos Roy and Shankar Ghosh, among others. Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. Since its launch in 2020, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed. Hailing the scheme, Prime Minister Narendra Modi said PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked, ranging from 42 rupees to 53 rupees 50 paise. There has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन, झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे, 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित, 75 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेज किया अभियान। और 10 जून से शुरू हो रहे झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। जेएससीए अध्यक्ष ने कहा, राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के खुलेंगे नए द्वार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 जून तक चलेगी। इन सीटों पर 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू सहित 3 संगठनात्मक नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे, जहां राज्य की 2 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर गठबंधन के भीतर चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।
4: 3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी और हम लोग गठबंधन के एक दूसरे के सहयोगी और इस नाते हम लोग बैठ करके ही कोई निर्णय लेते हैं। और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी के लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए और उसके बाद फिर इस पर हम लोग निर्णय लेंगे बैठ करके।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल रूप से इस योजना से जोड़ा गया है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नगर निगम क्षेत्र के डांडीडीह की लाभुक गुलशन और समीरन खातून ने बताया कि पहले मिट्टी और खपड़े के घरों में बरसात काटना मुश्किल था, अब पक्का मकान मिलने से वे सुरक्षित और खुशहाल हैं और उन्होंने सरकार का आभार जताया है।
5: मेरा नाम समीरन खातून है। मेरा घर का बहुत दिक्कत था, पहले खपड़ा घर में रहते थे, बहुत पानी उनी चूता था, इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग मांग किए कि मेरा घर न है और अब सरकार दे दिया, हम लोग तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं।
6: मेरा नाम है गुलशन आरा, घर डाड़ी, पहले घर टूटल उटल था, अब तो दे दिया घर, तब जरा बढ़िया बन गया, अब बढ़िया से रहने लगे।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी कई कामकाज का जायजा लेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और जनहित के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य में कैंसर के 35-40% मामलों का मुख्य कारण तंबाकू है। उन्होंने नशे के खिलाफ सामूहिक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में परिसीमन की चर्चाओं के बीच रांची में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में आदिवासी समाज की अहम बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने की आशंका पर चिंता जताई गई। श्री तिर्की ने बताया कि इस मुद्दे पर 17 जून को सर्वदलीय बैठक और 2 अगस्त को

0: रांची में आदिवासी महाजुटान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
1: 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया, तो पूरे राज्य के आदिवासी कुमार आएंगे और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी हालत में नहीं घटनी चाहिए, ये पूरे चीजों को लोगों को बताया जाएगा।
0: राजधानी रांची में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने आम जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है।
2: देखिए, पिछले एक हफ्ता में देखा जा रहा है कि जितने भी ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस हैं या फिर एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसका जो मुख्य कारण जो हम लोग को सामने आ रहा है कि लोग शराब का सेवन करने के उपरांत गाड़ियां चलाते हैं। तो ये स्पेशल जो ड्राइव चलाई गई है हम इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे चला रहे हैं और आगे भी इसको चलाते रहेंगे ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह इनमें घटोतरी आ सके।
0: मौसम विभाग ने बोकारो, रामगढ़ और सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए यह 23,551 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल जगत में भारी उत्साह है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने कहा कि 10 जून से शुरू होने वाली यह लीग राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के अवसरों का नया द्वार खोलेगी।
3: जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनको सारे लोग अभी जानते हैं, लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको शायद दुनिया ने अभी नहीं देखा है, तो उनको अपने टैलेंट को दिखाने का ये बेहतर मौका है। कोई खिलाड़ी जो है इसकी उसको मलाल ना रहे कि मुझे मौका नहीं मिले। जो की है ब्रांड T20 का झारखंड लीग का तभी बनेगा जब इसकी फैन बेस बढ़े, इससे हमारे झारखंड के खिलाड़ी जो है उनको इसका लाभ।
0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में गुजरात के 155 रनों के जवाब में बेंगलुरु ने विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 18वें ओवर में जीत दर्ज की। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं राजस्थान के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 776 रन बनाकर सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप और उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन। झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे। 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित। 75 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेज किया अभियान। और 10 जून से शुरू हो रहे झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। जेएससी अध्यक्ष ने कहा राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के खुलेंगे नए द्वार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में खमाज में ठुमरी। लीजिए सुनिए।

अभी आप सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। पहली गजल भूपेंद्र और मिताली सिंह के आवाज में।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. Tensions flare up again in West Asia as US strikes radar and drone control sites in Iran. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying held bilateral talks in New Delhi today. The talks aimed to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, came up for discussion during their talks. Our correspondent has the details.
3: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati.

0: मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
4: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
8: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। तो लीजिए सबसे पहले ये पेशकश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्मा का ये गाना, ये देशभक्ति गीत। आवाज थी कविता कृष्ण मूर्ति की, साथ में सुखविंदर सिंह, उदित नारायण।

के की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काइट्स का ये प्यारा सनगमा। इस गीत को लिखा था मनोज, इस गीत को लिखा है नासिर फराज ने। और अब आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं।

आप अभी फिल्म केसरी का ये नगमा सुन रहे थे। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग 2 से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान की और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा है समीर अनजान ने। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती, और अब आपको सुनाते हैं फिल्म बीवी नंबर वन का एक गाना जिसे गाया है अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इसे लिखा है समीर ने। लीजिए सुनिए ये गाना।

0: इसी गाने के साथ फौजी भाइयों को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 जून तक चलेगी। इन सीटों पर 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्वी सिंहभूम जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ हुई कथित मारपीट की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि हर घटना को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और इसके तार कोयला खनन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
1: लड़का है रवि बक्सरा, वो तोपचांची थाना क्षेत्र में जीटी रोड के नीचे गिरा हुआ था। सूचना दिया पुलिस को, पुलिस आई तो बताया कि गोली मार के लोग भाग गया है और किसी से कोई

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 एमबीबीएस छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। हजारीबाग जिले में सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा नशा मुक्ति और डायन बिसाही कुप्रथा के विरुद्ध नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विष्णुगढ़ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों तथा अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया गया। कलाकारों ने संदेश दिया कि शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक एकता के माध्यम से ऐसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। धनबाद के कोहिनूर मैदान में बने वेयरहाउस के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क को कोर्ट रोड से जोड़ा जाएगा ताकि वेयरहाउस आने वाले ट्रकों के परिचालन में कोई परेशानी नहीं हो। इस रोड के बनने से कई अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्तागण एसडीएम से वार्ता करने पहुंचे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि वार्ता में समाधान पर सहमति बनी है।

0: तो हम लोगों से बातचीत होने के बाद वो 25 फीट में बात तय हो चुका था। हम लोगों को बगल में जो खाली ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, तो उसको सफाई करके हम लोग अपने लिए बोले थे कि जो वकील वहां से हटे हैं उसको यहां पर बैठने का बात हो रहा है। इसी को फाइनल करने के लिए अभी हम लोग साहब भी बोले।
1: विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के पहले दिन आज साहिबगंज वन प्रमंडल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग समेत दर्जनों वन्य कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। डीएफओ प्रबल गर्ग ने बताया कि रक्तदान एक्सीडेंट और थैलेसीमिया के मरीजों के जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। वहीं सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता पर बल दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और इस वक्त आप इंतजार करते हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। खेलेंगे अंताक्षरी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और ये वक्त हो गया है नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षर म से।

तो फिर से अक्षर मिला है हमें ला, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपके साथ इस अंताक्षरी को और आगे बढ़ाऊं, लेकिन आप खेलते रहिए अंताक्षरी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और मुझे दीजिए अंताक्षरी समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 3:23 हो रहे हैं और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं रांची मेलेडीज। श्रोताओं, दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, मोहब्बत का रिश्ता कम नहीं होता। जो दिल में बस जाए उसका एहसास कभी कम नहीं होता। कुछ ऐसे ही अनमोल रिश्तों और यादों को समर्पित किया है मैंने इस गीत के माध्यम से। लीजिए, सुनिए।

इश्क में अदब भी है, नजाकत भी है और थोड़ी सी मीठी शरारत भी होती है। कभी एक नज़र का सलाम दिल जीत लेता है तो कभी कभी किसी के कदमों की आहट ही धड़कनों को बढ़ा देती है। और जब मोहब्बत अपनी पूरी तहजीब के साथ इजहार करे तो शब्द भी गीत बन जाते हैं, है ना। कहते हैं कि खूबसूरती के सामने फूल भी शर्मा जाए और मोहब्बत के सामने दिल भी अपना सलीका भूल जाए। अब ये दिल की गुस्ताखी कहिए या प्यार की अदा, लेकिन अगला गीत कुछ ऐसी ही मीठी शरारत और नफासत लिए हुए पेश है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनकी कोई योजना नहीं होती, लेकिन वही मुलाकातें दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ जाती हैं, है ना। कभी राह चलते कोई अजनबी या फिर अपनों से भी ज्यादा अपना लगने वाला कोई ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल अपना सा लगने लगता है। कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसास और अनकही यादों को समेटे हुए है अगला सदाबहार गीत। लीजिए सुनिए।

इश्क वो जज्बा है जो सरहदें नहीं देखता, ना दुनिया की रस्में ना जमाने की बंदिशें मानता है, है ना। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उस पर हिचक नहीं होती, और जब दिल किसी का हो जाए तो फिर इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बस हाँ, मोहब्बत की राह में जो भी मिल जाए हंसकर उसे प्यार कर लेते हैं और मौसम आशिकाना हो जाता है।

0: इस गीत के साथ रांची मेलेडीज़ का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। श्रोताओं, दिन के 4 बजने वाले हैं और इस वक्त आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। तो लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबंध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने डायरेक्टर ऑफिस का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और पीजी डॉक्टर भी शामिल रहे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो से अधिक गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप रैंक हासिल किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आओ साथ चलें।

श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सब से फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे

साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। श्रोताओं, ऐसे में साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि साइबर सुरक्षा क्या है? इसका अर्थ है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच, चोरी, हमले या नुकसान से सुरक्षित रखना। यह केवल बड़े संगठनों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधों का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में साइबर अपराध कई रूपों में सामने आ रहे हैं, मसलन हैकिंग यानी किसी सिस्टम या अकाउंट को बिना अनुमति के एक्सेस करना। फिर बारी आती है फिशिंग की, नकली ईमेल या लिंक के जरिए लोगों से निजी जानकारी चुराना। ऑनलाइन फ्रॉड तो आम बात हो गई है, बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पैसे की ठगी इसमें देखी जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, किसी की पहचान का दुरुपयोग, फिर डेटा को लॉक कर फिरौती मांगना। भारत सहित पूरी दुनिया में ऐसे मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, आज हम अपनी फोटो, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड ये सब ऑनलाइन रखते हैं। यदि ये जानकारी गलत हाथों में चली जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते उपयोग के कारण वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर हमले केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण संस्थानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। व्यापार और उद्योग की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। कंपनियों के डेटा और ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इसके कई उपाय हैं जिसके तहत हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें और इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे अकाउंट की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें ताकि नए खतरों से सुरक्षा मिल सके। पब्लिक वाईफाई का सावधानी से उपयोग करें, सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें, अपनी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर, इन सब को सार्वजनिक ना करें। सरकार और संस्थानों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ तकनीकी उपाय ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज में साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। श्रोताओं, यह केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें अपनी डिजिटल आदतों को सुरक्षित बनाना होगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा। यदि हम सावधानी और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम साइबर अपराधों से काफी हद तक बच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सुरक्षित डिजिटल जीवन ही आधुनिक जीवन की सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, अभी हमने आपसे चर्चा की साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज इसी से जुड़ी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं, साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। इस विषय पर
जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री मनोज रतन चौथे, डीआईजी स्पेशल ब्रांच

0: रांची, तो इनसे लेते हैं साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जो आज हमें इस माध्यम से सुन रहे हैं।
0: सर, देखा जाए तो डिजिटल माध्यम आजकल काफी बढ़ गया है और नेटवर्क के जरिए बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध को लोग सामान्य रूप से जान रहे हैं और इसके शिकार भी आए दिन लोग हो रहे हैं। सर, साइबर अपराध क्या है और इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी करवाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल मैम, ये जो साइबर का आपने पॉइंट उठाया है, ये आज के समय में बेहद रेलेवेंट है, और हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमें कई तरह के ऐसे विक्टिम्स देखने को मिलते हैं जो कि केवल अज्ञानतावश या अवेयरनेस के अभाव में साइबर के या साइबर फ्रॉड के वो विक्टिम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो केवल अभी साइबर फ्रॉड ओटीपी मांगने तक, या सामने वाला आपको मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, आपका डेबिट क्या डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर आप शेयर करिए, ओटीपी शेयर करिए, यहाँ तक सीमित नहीं रहते हुए उसका एक्सपांशन काफ़ी बड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के तिथि में ये है कि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और ख़ास करके लगभग सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है आपको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ आपको पोटेंशियल विक्टिम भी बनाता है साइबर फ्रॉड का भी, क्योंकि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, साइबर फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि कई सारी सावधानियाँ, कई सारे अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम लगातार भारत सरकार की जो I4C जैसी संगठन है या स्टेट गवर्नमेंट के भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में श्रोताओं को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और डिजिटल अरेस्ट वाली समस्या आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि इससे जुड़े बहुत सारी शिकायतें हमें मिल रही हैं और लोग इसके शिकार घर बैठे हो जा रहे हैं। सर, इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट पुलिसिंग में नहीं होती है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, और भारत सरकार द्वारा भी पिछले 1-1.5 साल से लगातार अभियान चला करके इस बात को सभी लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में आपको पता होगा कि जुलाई 2024 से नए BNS और BNSS लागू किए गए थे, जो पहले की IPC और CRPC हुआ करते थे, और उसके बाद कई लोगों को ये भ्रम हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि BNS या BNSS के चेंज होने के बाद में अब लोगों को डिजिटली भी अरेस्ट किया जा सकता है, या फिजिकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली लोगों को अरेस्ट में रखा जा सकता है। पर मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट BNS या BNSS में इंक्लूडेड नहीं है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी इस तरह का फोन या मैसेज आता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम्स द्वारा पकड़ा गया है, या कोई आपके पार्सल में किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जैसे कि गांजा, अफीम, या कोई रेयर चमड़े का बैग, पर्स आपके सामान में पाया गया है, और आपको उसके लिए हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं और आपको आपके घर में रहना पड़ेगा, तो आपको समझना होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति एक साइबर फ्रॉडस्टर है, और वो आपसे पैसा ठगने के लिए केवल इस तरह के ये तरीके आजमाता है। तो आपको इस तरह के जो मैसेजेस है, इस तरह के जो कॉल्स है, उनको 1930 एक नंबर है जो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है, जो आपको साइबर फ्रॉड होने के स्थिति में आपको हेल्प मुहैया कराएगा, और आपको जो फोन से या नंबर से मैसेज आया है उस नंबर को तत्काल ब्लॉक करने का भी काम 1930 के हेल्पलाइन आपके लिए कर सकती है। तो मुझे लगता है

0: कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में डिजिटल अरेस्ट आज एक रूप ले चुका है, और मुझे यकीन है कि जो हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न चैनलों पे, उससे निश्चित रूप से इसमें लोग अवेयर होंगे और इस समस्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।
1: सर, इसमें हमने भी देखा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक वीडियो कॉल आता है और उसमें एक पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे हुए एक व्यक्ति मिलता है, जो देखा जाता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा है तो उस बच्चे की आवाज़ की भी कॉपी की जाती है और फिर कहा जाता है कि बच्चा हमारी कस्टडी में है और कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया है, इसलिए आपको थाने में इतनी रकम जमा करानी होगी अगर इसे छुड़वाना है। ये कहाँ तक सही है?
0: ये भी एक साइबर फ्रॉड का ही तरीका है और कभी भी पुलिस इस तरह का कॉल आपको नहीं करेगी, ना आपको वीडियो कॉल करके इस तरह का कोई निर्देश या आदेश देगी कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति हमारे पास थाने में लॉकअप में बंद है और आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। और इस तरह का अगर कोई बात आपके सामने आता है तो आप तत्काल इसको नज़दीकी थाने के माध्यम से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 99% से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि 100% ये साइबर फ्रॉड ही होता है। कभी भी कोई पुलिस आपको इस तरह का पैसा देने के लिए फ़ोन नहीं करेगी अगर वो जेन्युइन पुलिस वाले हैं तो। और डिजिटल अरेस्ट या इस तरह का जो भी मामला होता है, ये लीगली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही पुलिस इस तरह के डिजिटली अरेस्ट करने की कोई पावर रखती है।
1: और सर, देखा गया है कि जब अभिभावकों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं तो चूंकि ये मामला उनके बच्चे से जुड़ा हुआ होता है तो वे काफ़ी घबरा जाते हैं और तत्काल उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और जिस वजह से वो इस ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे?
0: मैं सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ एक चेकलिस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। पहले तो आप ये तय कर ले कि आपका बच्चा मोबाइल हैंडल करने के लिए सक्षम है, उसका उम्र उस मोबाइल को हैंडल करने के लिए उस उम्र का वो मकाम पे वो पहुँच चुका है, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, आप रेगुलर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या यूट्यूब में वो क्या एक्टिविटी करता है या ब्राउजर में वो क्या एक्टिविटी करता है, आप रेगुलर उसको देखते रहे। तीसरी चीज़, आप उसके पास जो भी मोबाइल दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड ना करें, ना ही उस फ़ोन पे किसी तरह के OTP लिंक्ड मोबाइल आप उसके साथ रहने दें। कई बार ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, सामने का कोई अननोन आदमी फ़ोन करके उससे OTP पूछ सकता है और बच्चे अनजाने में भी OTP शेयर कर सकते हैं, इसीलिए उनके हाथ में इस तरह का कोई भी मोबाइल डिवाइस नहीं देना चाहिए जो कि आपके बैंक के खातों से या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स हो या अन्य किसी तरह के अकाउंट्स हो जिसके साथ वो जुड़ा हो, ताकि आपके साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं हो पाए। साथ ही जो बच्चे वेब ब्राउजिंग करते हैं उसको नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। आजकल हम लोग रेगुलर पुलिसिंग के दौरान ये पाते हैं कि कई सारे जो एडल्ट बच्चे हैं वो कई बार जो पॉन है उसके भी आदि हो जाते हैं। तो मेरी अभिभावकों से एक अपील रहेगी कि लगातार आप अपने बच्चों का ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे, वो किस साइट्स को विजिट कर रहे हैं, किस तरह के वो वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं आदि अगर आप चेक करते हैं। और बच्चों की ज़रूरी होता है कि काउंसलिंग पेरेंट्स के द्वारा की जाए। कई बार अभिभावकों के और बच्चों के बीच में एक पर्दा रह जाता है और बच्चे जो बाहर हुई चीज़ें हैं वो घर में आकर के बताने से परहेज करते हैं। बच्चों को अगर ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मैंने घर में आकर के बाहर जो चीज़ हुई है वो अपने माता पिताजी को अगर मैंने बताया तो उसको उनके द्वारा पॉजिटिवली लिया जाएगा, मुझे उल्टी डांट नहीं पड़ेगी और उस समस्या का मुझे हल मिल सकता है। ये बच्चे में जब आत्मविश्वास आप जगाने में सफल रहेंगे, मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह के कभी गलत राह पे नहीं चलेगा, और उसको अगर कोई परेशानी भी आती है तो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों की, अपने शिक्षकों की वो

0: सहायता ले पाएगा और वो फ्रीली उस बात को बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों इन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को साइबर फ्रॉड या इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है सर, और बच्चों के लिए अभिभावकों के लिए आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। अभी एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर में हैं उनके हाथ में भी मोबाइल हैं, मोबाइल फोन्स का वो भी काफ़ी अच्छे खासे रूप में प्रयोग कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर कुछ सामान वगैरह मंगवाना। कई बार देखा जाता है ऐसे लिंक भी उनके पास शेयर किए जाते हैं जिसको कहा जाता है कि ये क्लिक करने से कुछ गिफ्ट कुछ उपहार आपको मिलेंगे और इसके जरिए भी कुछ फ्रॉड्स देखे जाते हैं। सर, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
0: बिल्कुल, ये आज सबसे बड़े मात्रा में होने वाला एक फ्रॉड के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। आपके फ़ोन पे कई बार SMS आते हैं या WhatsApp पे मैसेज आता है कि ये लिंक आपको मिला है, डिस्काउंट कूपन इसके द्वारा डाउनलोड होगा, या एक APK फाइल होती है जिससे कि कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाता है, और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करते हैं या उस APK फाइल को आप डाउनलोड करके कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है और वो व्यक्ति रिमोटली आपके फ़ोन को या तो कंट्रोल कर सकता है या आप अपने फ़ोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना हो, OTP हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालना हो या अन्य किसी तरह के पर्सनल व्यक्तिगत आपके जो मैसेजेस होते हैं वो सबको वो दूर बैठे देख सकता है और उसका वो निश्चित रूप से मिसयूज़ कर सकता है और करते भी है। तो सबसे पहला मेरा अपील सभी श्रोताओं से यही रहेगा कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजा गया लिंक को कृपया क्लिक नहीं करें और कोई भी इस तरह का ऐप या लिंक जो आपको कहता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, कृपया उन चीज़ों से आप परहेज करें। जो ऑथेंटिक साइट से, शॉपिंग की वेबसाइट से, उसका आप कृपया यूज़ करें।
1: बिल्कुल सही बात है, और सर अमूमन देखा गया है कि हम ATM कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, बैंक से हमारा ATM लिंक्ड होता है, कई बार बैंक के अधिकारियों का भी फ़ोन आता है कि इसे आपका ब्लॉक किया जा रहा है कार्ड को, आप जल्द से जल्द यहाँ KYC वगैरह के लिए OTP जो भेजा जा रहा है वो बताएं। तो ऐसे हालात में भी लोग घबरा जाते हैं और बैंक की बात आती है तो उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होती है और ऐसे में वो अपना लिंक के माध्यम से जो OTP आता है वो शेयर करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो एक सतर्कता और एक जानकारी के लिए, आप जागरूक रहने के लिए हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
0: जब आपको कोई भी फ़ोन आता है और जिसमें कहा जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका KYC एक्सपायर होने वाला है या आपको कोई डेटा या ब्यौरा मांगा जाता है, तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि बैंक्स आपको कभी भी आपका व्यक्तिगत डेटा नहीं पूछेंगी। आपको यदि कोई डेटा जमा भी करना है तो आपको आपका जो होम ब्रांच है या नज़दीकी उस बैंक का जो ब्रांच है, आपको वहाँ जा कर के उस कॉल के सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। और वाकई में अगर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है या और एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक अगर मांग रहा है तो आपको फिजिकली उस बैंक में जाकर के देने चाहिए। बैंक आपसे कभी भी आपके व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वोटर ID नंबर, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर या किसी तरह का OTP आपसे नहीं पूछता है और ना ही उनको पूछने की सरकार द्वारा इसकी परमिशन दी गई है। इसलिए ये सबको मन में एक बार कन्फर्म रूप से रख लेना चाहिए कि आपको कोई भी व्यक्तिगत डिटेल किसी भी फोन कॉलर को शेयर नहीं करने हैं। यदि आप उसको शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल सही बात है, और सर जितनी तेज़ी से हमने तकनीकी क्षेत्र में विकास किया है, जितने गैजेट्स हमारे पास हमारे हाथों में आ गए हैं जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, तो इनके ज़रिए हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। जाने

0: और अनजाने दोनों ही ढंग से ये फ्रॉड हमारे साथ हो जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके के जो भोले भाले लोग हैं इसके गिरफ्त में ज़्यादातर आ जा रहे हैं, चाहे वो वजह उनकी अशिक्षा हो, गरीबी हो या फिर कोई और वजह या जानकारी का अभाव हो। तो सर, ऐसे लोगों को आप सतर्क रहने के लिए अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे आपने कहा कि ग्रामीण भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड्स को ज़्यादा शिकार होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है। कई बार जो हम लोग जागरूकता के अभियान चलाते हैं वो शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु मैं सबको और आकाशवाणी, मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि भारत के हर कोने तक ये माध्यम पहुँचता है और हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं वो भारत के हर एक कोने में हम लोग पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह के माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो साइबर हाइजीन है या जो साइबर सैनिटेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या इवन आपके जो CCTV कैमराज हो, ये सारे ससेप्टिबल है, ये सारे आपके डिवाइसेस वल्नरेबल है साइबर फ्रॉड के लिए। जो भी साइबर रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती है विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यमों से, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से, जो वेरीफाइड हैंडल से, या इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे या विभिन्न चैनलों पे, उस पे दिए जाने वाले इन सुरक्षा के जो नियम हैं उसको यदि सभी लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि इस तरह के जो फ्रॉड से उससे हम लोग बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग और पुलिस, ये एक तरह से बिल्ली और चूहा का खेल है। वो हमेशा ही एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए, और पुलिस भी उन तरीकों को ढूंढ करके उस तरीकों के पीछे जो लोग होते हैं उनको पकड़ने की और उनको सज़ा दिलाने की कोशिश लगातार रहती है। परंतु इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होते हैं हमारे आम नागरिक, जो कि इन साइबर ठगों के वो बलि चढ़ जाते हैं। जो साइबर अवेयरनेस की जो बातें आज हम लोगों ने यहाँ कही है वो सभी लोग अगर अपनाते हैं और थोड़ा सा ध्यान वो अपने एक्टिविटी पर, हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, हम किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं, उस पे अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी फिर दोहराना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके मोबाइल यूज़ करते हैं उनको निश्चित रूप से आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कम उम्र के चलते और दूसरा कम एक्सपोजर के चलते, कम जागरूकता के चलते साइबर बुली होने का या साइबर फ्रॉड उनके साथ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ ही बच्चों का भी जो साइबर अवेयरनेस है वो स्कूलों के माध्यमों से और कॉलेजों के माध्यमों से मुझे लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसके दिशा में हम लोग लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग को रिलीफ मिल सकती है। और जो साइबर हेल्पलाइन नेशनल लेवल पे जारी की गई है 1930, उसका आप अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी तरह का कोई फ्रॉडुलेंट कॉल आता है या आपको आशंका है कि इससे आपको साइबर ठगी हो सकती है, उस नंबर को तत्काल आप 1930 जो कि टोल फ्री नंबर है पे आप रिपोर्ट करें, और उस नंबर के ऊपर में तत्काल एक्शन इनिशिएट हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, जो विक्टिम होने के सबसे ज़्यादा जिनकी आशंका बनी रहती है, उनके द्वारा थोड़ा सा भी जागरूकता दिखाया जाता है तो काफ़ी हद तक हम इस साइबर फ्रॉड को लगाम लगा पाएंगे।
0: सर, स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग पैसे धड़ल्ले से लगा रहे हैं, कई लिंक आते हैं उसके लिए भी, और उसमें करोड़ों तक की ठगी हो जाती है लोगों के साथ। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसमें सजगता के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा को आपने टच किया है। खास करके कोविड के बाद में लोगों में स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड्स द्वारा कई तरह के लिंक्स, कई तरह के डमी डीमैट अकाउंट ऐप्स बनाए जा रहे हैं, और उसमें पैसे लेने के बाद में वो पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड टिप्स आते हैं तो कृपया उसके ऊपर यकीन नहीं करें। आज भी आप देख सकते हैं आपको कई तरह के SMS आते हैं जिसमें आपको एक स्टॉक का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, इससे आपको मल्टीफोल्ड पैसा आप बना सकते हैं। तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करें, ये मैनिपुलेटिव स्टॉक टिप्स होते हैं। वो पंप एंड डंप नाम की एक स्कीम होती है, उसके तहत स्टॉक को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद फिर जो आम जनता है, इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा हड़पने की एक कोशिश होती है। तो इस तरह की जितने भी ये साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा अपनाई जाती है तरीके, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और खास करके पोस्ट कोविड जो डीमैट अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड से इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। कई बार आपको एक लिंक आ जाती है और कहा जाता है कि आप अगर ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ मनी बैक दिया जाएगा या कैश बैक दिया जाएगा, और उस लालच में लोग उस तरह के लिंक्स पे, ऐप्स पे क्लिक करते हैं और अपना पूरा का पूरा बैंक का खाता खाली करवा के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आप अगर इसमें अपनाते है, और आज के डेट में आपके पास, आपके हाथ में इंटरनेट है, किसी भी आपको सस्पिशियस लिंक का पता लगाने के लिए कई तरह के ऐप्स उपलब्ध है, आप उसका सहारा ले सकते हैं ताकि इस तरह के जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे आप बचे हुए रहे।
0: सर, साइबर अपराध से जुड़ी क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और किस तरह से हम इस ठगी के शिकार हो सकते हैं? आपने काफ़ी विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिया, और सर कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद मैडम, और मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी सहायता होगी, और अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम एक भी साइबर फ्रॉड होने से अगर बचा ले तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।
2: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा की थी और प्रस्तुति नूतन प्रसाद का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, कार्यक्रम होगा सांझ सरगम, संध्या 5 बजे, और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार, और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी, कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी इतिहास के बारे में, आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रोचक तथ्य। पांच बजकर 30 मिनट पर श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक, कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे साझा जिम्मेदारी प्यारी किलकारी, बच्चों को दें सुरक्षित माहौल। कलाकारा नरगिस की जयंती पर आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे अभिनय की पाठशाला नरगिस, मेहनतकश माताओं को आराम और सम्मान, मजदूरी के साथ सेहत का ध्यान, PM मातृ वंदना योजना, 6:02 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा उन्नत बीज का चयन कैसे करें। साथ ही आप जानकारी पाएंगे डॉक्टर परवेज आलम से खरीफ आने से पहले खेत की तैयारी

6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा तनाव के कारण और बचाव, सुनहरे भविष्य की ओर हमारे बढ़ते कदम। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर सुनीता कुमारी गुप्ता की पंच परगनिया वार्ता, विषय है सकारात्मक सोच रखें। 7:15 पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज का यह कार्यक्रम उरांव भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी परिश्रम से ही सफलता संभव, साथ ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में। आयोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुन सकते हैं इसी सभा में 7:45 पर और रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:10 से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनहरी यादें में, 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित सियाराम तिवारी से गायन। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार शानू और पी सुनंदा को फिल्म रंग में। गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर में कुमार शानू आशा भोसले को। शब्द रचना मदन पाल की है, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू और आशा भोसले को फिल्म जान तेरे नाम में। शब्द रचना सईद राही की है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक उपयोग, नागरिक सुविधाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यों के लिए झारखंड सरकार को दान की जाने वाली निजी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया है। यह छूट पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत सरकार द्वारा चिन्हित और अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों पर भी लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इसे 27 मई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक से स्वीकृति प्राप्त है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबंध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। दुमका में स्वास्थ्य सहायकों ने 8 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और 5 दिनों के भीतर लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग की। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दंपति भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ 7,000 रूपए अधिक कैश भी जब्त किए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के तहत आज साहिबगंज वन प्रमंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग समेत दर्जनों वन्य कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

इस समय आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर को, फिल्म दीवाना में। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

Listen up, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. It's Valentine's Day.

फिल्म भागवा के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: रोटी कपड़ा शिक्षा और प्यार हर बच्चे का है अधिकार।
1: बच्चों को ऐसे ही अधिकार देने वाले माता पिता को वैश्विक अभिभावक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम श्रमिक लोक में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त, नमस्कार जोहार सभी श्रमिक साथियों को।
0: और सुषमा के साथ ही आज पूरे आधे घंटे के सफर में आपकी सहयात्री मीनाक्षी भी आपके साथ है। स्वीकार करें स्नेहिल सा नमस्कार। हाँ सुषमा, आज यानी 1 जून को पूरी दुनिया माता पिता में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनके चरित्र निर्माण और भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका के महत्व को बताता है।
1: जी हाँ साथियों, सभी माता पिता अपने बच्चों के अच्छी जीवन को गढ़ने का काम करते हैं। हम और आप सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन्हें सभी खुशियां मिले, उनके सपने पूरे हों। क्यों मीनाक्षी?
0: बिल्कुल सुषमा, हम यही चाहते हैं। लेकिन श्रमिक साथियों, मुझे लगता है सिर्फ हमारा चाहना भर काफी नहीं। आजकल ज्यादातर माता पिता जो कि अक्सर सुषमा हम देखते हैं दोनों काम पर जा रहे होते हैं, ऐसे में वो बच्चों को क्वालिटी टाइम मतलब जो अच्छा समय चाहिए नहीं दे पाते हैं। बच्चों की भावनाओं को, उनके शौक को बिना समझे बस उन पर अपने सपने थोपने का काम करते हैं।
1: इतना ही नहीं मीनाक्षी, अब तो माता पिता और बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त रहने लगे हैं। यही वजह है कि बच्चे मोबाइल, नशा पान के जो लत होती है उस ओर भटक जाते हैं, टीवी, गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हीं समस्याओं पर ध्यान देने के लिए इसके साथ ही माता पिता को सम्मान देने और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में उद्घोषित किया था।
1: और आज के दिन हम हर बच्चे से यही कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और संस्कार को जीवन में उतारने की कोशिश करें। माता पिता अगर आपको डांटते भी है ना, तो इसमें भी आपकी ही भलाई छुपी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने, हम हर माता पिता से भी कुछ कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को से अपना भावनात्मक लगाव बनाइए, आप उनसे जुड़िए। ये जरूरी नहीं, ये काफी नहीं है कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर दें। अगर वो 1 मांगे और आप 10 ला के दे दें, उनको सारी सुख सुविधाएं दे दें, ये जरूरी नहीं है। बल्कि आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े, उनके शौक, उनकी जो सोच है, वो जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे आप पहले समझिए। इसके साथ ही सुषमा बहुत बड़ी बात है कि कई माता पिता अपने बच्चों की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं कि आज बच्चा क्यों उदास है, आज बच्चा क्यों ठीक से खाना नहीं खा रहा है, और खासकर जो हमारा यूथ होता है आज वो क्यों थोड़ा उड़ा उड़ा सा है,
1: उसका समय पर उनकी बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं ना, तो उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल
0: है ना, उनके सपनों पर खुलकर उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानी पर उनसे खुलकर बात कीजिए, उन्हें अपना दोस्त और एक अच्छे परिवार को गढ़ने का काम करिए। क्योंकि कहते हैं ना श्रमिक साथियों कि हर पत्थर एक मूरत बन सकता है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए।
1: तो साथियों, अपने बच्चों को तराशिए ताकि आप भी उन पर गर्व कर सके।
0: बिल्कुल, और सुषमा बातचीत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहते हैं कि श्रमिक साथियों कि हमारी सरकार भी इस तरह से माता पिता का और बच्चों का ख्याल तो रखती है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है के लिए, और खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो हमारी स्तनपान कराने वाली धात्री माताएं होती हैं, उनके लिए हमारी सरकार बेहद महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चल रही है ताकि उनमें कुपोषण ना हो। गर्भावस्था के कारण जिनका काम छूट जाता है, बहुत सारी हमारी वर्किंग लेडी होती हैं, जो हमारी मजदूर बहनें होती हैं जो काम नहीं कर पाती हैं, उनका काम छूट जाता है जब वो प्रसव के बाद जब 6 महीने 8 महीने काम पर नहीं जा पाती हैं, तो इस समय
1: उनको आर्थिक मजबूती देने के ओर काम कर रही है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पहले बच्चे के गर्भावस्था पर महिला अगर पंजीकरण करवाती है तो उसे 3,000 रुपए की राशि और प्रसव के पूर्व कम से कम एक जांच पूरी होने के बाद 2,000 रुपये तक की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
0: बिल्कुल, इसका मुझे लगता है सुषमा इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना पंजीकरण करवाएं, यानी उनका संस्थागत प्रसव हो किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर की देखरेख में, जिससे कि जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम हो सके।
1: बिल्कुल, पंजीकरण बहुत
0: ही जरूरी है और सरकार इसके लिए जागरूकता भी बहुत चलाती है।
1: बिना पंजीकरण के उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, वंचित रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है मीनाक्षी की महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी ही चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि 18 वर्ष शादी की उम्र है और एक साल का और अंतराल।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और पता है कि श्रमिक साथियों की अगर दूसरा बच्चा लड़की हो तो महिला के खाते में जो एकमुश्त राशि जो होती है 6,000 की राशि भेज दी जाती है।
0: इसके पीछे भी एक उद्देश्य मुझे लगता है सुषमा, कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, है ना। बालिकाओं को पूरा सम्मान मिले जो बच्चियां जन्म ले रही हैं, और माता पिता पर बोझ ना, जैसे ही जन्म होता है तो कई लोग अभी भी मुंह बना लेते हैं कि अरे बेटी हो गई, तो ये धारणा को तोड़ने के लिए भी एक उनको सम्मान के रूप में भी ये राशि प्रदान की जाती है।
1: बिल्कुल, और महिलाओं और जो माताएं हैं जो को जो सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना बेहद ही कहें तो महत्वाकांक्षी योजना है। और अगर हमारी कामकाजी महिलाएं माँ बनने वाली हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसी महिला है तो जरूर इस योजना के लिए पंजीकृत करवाएं और उनको ये लाभ उठाने दें।
0: बिल्कुल सुषमा, आपको नहीं लगता क्या शुरू से लेकर अभी तक श्रमिक साथियों तक हम सिर्फ ज्ञान ही भेज रहे हैं? भाई इतनी लंबी बातचीत के बाद अगर थोड़ा गाना गुनगुना हो जाए, थोड़ा गीत संगीत हो जाए तो मुझे लगता है बड़ा सुकून लगेगा। क्यों
1: तो साथियों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वाह भाई मजा आ गया, बहुत ही प्यारा, बहुत सुकून देने वाला गाना था ना सुषमा। आप चलो कार्यक्रम के आगे बढ़, कार्यक्रम की डगर पर आगे बढ़ने का उत्साह मुझे लगता है इस गाने को सुनकर बढ़ गया है। तो सुषमा बताइए, अब आगे आपके पिटारे में क्या निकलने वाला है भाई?
1: भाई मेरे पिटारे में तो हमेशा ही श्रमिकों के लिए जानकारियां होती है, उनके काम की बातें होती है।
0: अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन सी जानकारी है?
1: देखिये मीनाक्षी, हमारे श्रमिक भाई बहन कितनी मेहनत करते हैं ना, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा भी तो जरूरी है ना,
0: बेहद जरूरी।
1: और इसके लिए हमारे देश में कई श्रम कानून हैं,
0: और इन श्रम कानूनों की जानकारी भी हमारे श्रमिक साथियों को होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी बात को ध्यान में रख के आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अभिषेक साहे को, जो श्रम कानूनों पर और रोजगार से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे।
2: श्रमिक साथियों, श्रमिकों का हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों के माध्यम से ही हमारे देश का विकास संभव है, इसलिए इनके विकास के लिए हर तरह की सुविधा इनको प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ श्रम कानूनों के बारे में। श्रम कानून किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। श्रम कानून को हम श्रम संनियम के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक संनियम का आशय उस विधान से है जो औद्योगिक संस्थानों, उसमें कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगपतियों पर लागू होता है। इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान और सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान। उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान में वे सब अधिनियम आते हैं जो कारखाने तथा श्रमिकों के काम की दशाओं का रेगुलेशन करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भृति भुगतान अधिनियम 1936, श्रम जीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान के अंतर्गत वे समस्त अधिनियम आते हैं जो श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभों, बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी आघात, प्रोविडेंट फंड, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। भारत में लगभग 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू हैं। वास्तव में श्रम विधान सामाजिक विधान का ही एक अंग है। श्रमिक समाज के लिए विशिष्ट समूह होते हैं, इस कारण श्रमिकों के लिए बनाए गए विधान सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रसार, मजदूरी अर्जकों के अस्थायी वर्ग में वृद्धि, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार, श्रम संघों के विकास, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार, प्रबंधकों और नियोजकों के परमाधिकारों में ह्रास तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता बढ़ गई है। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त समझा जाता है। सिद्धांतः श्रम विधान में व्यक्तियों या उनके समूह को श्रमिक या उनके समूह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक श्रम विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, मजदूरी की मात्रा, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी की कसौटियाँ, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टी, कार्य की भौतिक दशाएं, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, अस्थायी आदेश, नियोजन की शर्तें, बोनस, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति, हित लाभ एवं कल्याण निधि आदि हैं। श्रमिक साथियों, आइए हम जानते हैं कि श्रम कानून का उद्देश्य क्या है। औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना, मजदूरी अर्जकों के अस्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार को देखते हुए स्थानीय परिदृश्य में लागू कराना, श्रम संघों का विकास करना, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना है। साथियों, इस श्रम कानून के अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम भी आता है। यह अधिनियम खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके रोजगार को विनियमित करता है। उच्चतम न्यायालय ने भी बाल श्रम से जुड़े कई तरह के कानून बनाए हैं। औद्योगिक रोजगार अधिनियम, इस अधिनियम में प्रतिष्ठानों में नियुक्ताओं के लिए उनके अंतर्गत रोजगार की स्थितियों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना और अधिप्रमाणन प्राधिकारी के पास अस्थायी आदेशों के प्रारूप को भेजना अपेक्षित बनाया गया है। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें लगभग 100 अथवा इससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों अथवा रेलवे प्रशासन अथवा बड़े बंदरगाह, खान अथवा तेल क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त सरकार है। श्रमिक साथियों, अब हम जानते हैं श्रम कानून अनुपालन के अनिवार्य नियमों की। श्रम कानून अनुपालन, जिनका कंपनियों को पालन करना होता है, ये रोजगार के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का समूह है। उद्योगों की अर्थव्यवस्था, कार्य संस्कृति समय के साथ बदली और विकसित हुई है, लेकिन श्रम कानून अनुपालन नियम आज भी 50 से 100 साल पुराने हैं। श्रम अनुपालन का महत्व भारत के में बहुत ज़्यादा है। भारत में प्रत्येक प्रतिष्ठान को श्रम कानून के विभिन्न वैधानिक अनुपालन नियमों का पालन करना होगा। अनुपालन का दायरा काफ़ी व्यापक है और इसके लिए नियोक्ताओं को किसी भी अभियोजन के मामले में विभिन्न कानूनों के तहत साक्ष्य के रूप में अनुपालित के रिकॉर्ड पेश करने की आवश्यकता होती है। इन कानूनों का पालन न करने की स्थिति में कानून द्वारा कई दंड निर्धारित हैं। श्रम कानून में श्रमिकों के अधिकारों के प्रमुख पहलू को शामिल करते हुए विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। अधिनियमों की उपयोगिता प्रतिष्ठान के प्रकार पर निर्भर करती है और नियोक्ता और कर्मचारियों पर क्रमशः एक से अधिक कानून लागू हो सकते हैं। श्रम कानून के तहत अनुपालन अवधारणाएं काफ़ी हैं। श्रम कानून अनिवार्य रूप से अन्य बातों के साथ

0: मातृत्व समाप्ति आदि जैसे कर्मचारी लाभों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रम कानून की संरचना में राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के तहत विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। इसी के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 आता है। यह अधिनियम एक ठेकेदार के माध्यम से 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले निर्माण स्थलों पर लागू होता है। हालांकि यह फैक्ट्री अधिनियम 1948 या खान अधिनियम 1952 के दायरे में आने वाली साइटों पर लागू नहीं होता है। अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू होता है जहां 20 या अधिक कर्मचारी 12 महीने के लिए अनुबंध मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। यह काम के आकस्मिक प्रकृति वाले स्थानों पर लागू नहीं होता है और यदि नियोक्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है तो वह ठेका मजदूरों को नियुक्त नहीं कर सकता है। रोजगार राज्य बीमा अधिनियम 1948 यह अधिनियम कर्मचारियों का को मातृत्व बीमारी और रोजगार चोट जैसे अन्य लाभ प्रदान करता है। यह अधिनियम रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम सरकारी कारखानों को कवर करता है। शायद इसमें मौसमी फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं। ऐसी फैक्ट्रियों को इस अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान करना होगा। यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत लाभान्वित होने वाले व्यक्ति अन्य अधिनियमों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 यह अधिनियम विभिन्न कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह कारखानों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि श्रमिकों का रोजगार ऐसी स्थिति में हो जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 यह अधिनियम उन उद्योगों पर लागू होता है जिनमें 12 महीनों में 100 या अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 यह अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना किसी अनाधिकृत कटौती के समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करता है। वेतन का सारा भुगतान कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। वेतन का भुगतान चालू मुद्रा में चेक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि श्रमिकों का हमारे देश और हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों के बिना देश का विकास अकल्पनीय है। श्रमिक ही हमारा वो बल है जिससे प्रकृति के कण कण का विकास किया जा सकता है।
1: सचमुच सुषमा, अभिषेक साहेब जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हमारे श्रमिक साथियों से हम एक बात कहते हैं कि आपको भी जागरूक रहना होगा श्रम कानूनों का अगर संरक्षण आप प्राप्त करना चाहते हैं। और पता है सुषमा, आज ना जैसे ही मैंने रेडियो ट्यून किया सुबह, एक बड़ा ही प्यारा सा गाना सुनाई पड़ा, पंछी बनो उड़ते फिरो। और गाना सुनते ही फिल्म बरसात में हीरोइन नरगिस की चंचलता मेरी आंखों के सामने आ गई। क्या कलाकार थी नरगिस वीना।
2: बिल्कुल सही बात कह रही हो मीनाक्षी। आज जो 1 जून को हम भारतीय फिल्मों की बेहद संवेदनशील, सशक्त और उच्च अभिनय क्षमता वाले कलाकार नरगिस को हमने उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल श्रमिक साथियों, यूं तो नरगिस ने बचपन से ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। श्री 420, मदर इंडिया, चोरी चोरी, अंदाज, आवारा जैसी अनगिनत फिल्में हैं जो आज तक हमें उनकी याद दिलाती रहती हैं, जिसमें हमें नरगिस की बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली।
2: और पता है श्रमिक साथियों, मदर इंडिया नरगिस की ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए भी नामित हुई थी और उनकी शानदार अभिनय कला के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था।
1: रात और दिन के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। भारतीय सिनेमा में नरगिस का योगदान अमर है।
2: तो जो मीनाक्षी, नरगिस पर ही क्यों ना हम उनके उन पर फिल्माए गए गाने हम सुनते हैं, जो बहुत ही आज भी हम गुनगुनाते हैं।
1: बिल्कुल, शायद पंछी बन उड़ती फिर।
2: बिल्कुल सही समझे।

0: क्या बात है सुषमा, जैसे आज हम नरगिस को याद कर रहे हैं ना, उसी तरह से संगीत जगत की एक बहुत मखमली सी आवाज सुमन कल्याणपुर, जो कि आज हमसे विदा लेके चली गई इस दुनिया से, हम उनको और उनकी आवाज को भी हमेशा याद करते हैं। संगीत के चाहने वाले हर किसी के हृदय में उनका बहुत बड़ा स्थान है। संगीत में जो उनका योगदान है, उनकी जो आवाज है, वो हमेशा याद रहेगी। और सुषमा, इसके साथ ही इस कहावत पर भी हमारे श्रमिक साथियों को ध्यान देना चाहिए कि पहला सुख निरोगी काया।
1: इसीलिए काम की व्यस्तता के बीच सेहत को कभी नजरअंदाज न करें। तो साथियों, जीवन में सफलता के लिए काम जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी अच्छी सेहत भी है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही। अपनी दोस्त सुषमा
0: और मीनाक्षी को इजाजत। नमस्कार।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावासों की स्थिति और आश्रम स्कूलों के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने तथा कल्याण विभाग के विद्यालयों में SIR और जनगणना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया और सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से संबंधित पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जमशेदपुर दौरे के दौरान परिसदन में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश इकाई ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सरायकेला में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर तंबाकू के दुष्प्रभावों तथा इससे बचाव के उपायों की जानकारी देगा। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को वुशु खेल की विभिन्न तकनीकों, कौशल एवं प्रतियोगितात्मक तैयारियों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

0: पढ़ो लिखो विकास का डहर में आगे बढ़ो। कार्यक्रम सुनवाइया सौ भाई बहन मन के खेती बाड़ी में मोनिका बाटे जोहार और पायर बहन रौर को जोहार
1: जोहार जोहार। आज बड़ा नगद दिन बादे भेटा ले क्या?
0: सही बात है बहन, नहीं कहे तो बहुत दिन बादे भेटा थी और देखो हाल चाल भी बढ़िया है और बहुत खुशी भी हुआ थे कि इतना दिन बाद भेट रहा थी नहीं।
1: हाँ।
0: काल की बहन देखो काम धाम कर चक्कर में सब मन अपन अपन काम में अत बिजी रह जाती ला।
1: हाँ।
0: कि फुर्सत नहीं भेटा ला है ना
1: तो,
0: और आज कल युग में तो फोन हो गलक तो फोन से घोटिया लेती तो हो गलक है ना
1: से भे गलक। आज कहो
0: और देखो बहन अभी तो ये दिन तो देखो हमगर मौसम में प्रतिदिन चेंज होते है जाते, कभी धूप तो कभी बरखा, अभी कहो तो अभी तनी देर पहले बहुत जोर से बरखा भी हुआ लेकिन देखाते रहो तो भीग
1: भी जाए और आवाज भी हमारे बैठ गया लग।
0: हाँ ये ठंड कर यानी कि
1: हाँ।
0: सम कर हिसाब से ठंडा गर्म मौसम भी हुआ थे तो ये ठंडा गर्म कर मौसम में हमरे के अपने आप के बचा के रखे के बहन और सावधानी बरते के है नी।
1: गाँव बटे आवेला बेचाले आइसक्रीम मन से के खा देवे।

0: ओहो, खाकर मजा तो झेले के पड़ी है। सही बात है बहन, काले की देखो दिखेला तो खाकर मन करेला, मन मन भी नहीं
1: एकदम
0: करेला है नहीं।
1: नहीं माने
0: और देखो बहन, अभी हमरे कर गांव घर में तो कृषि मन, हमरे कर जो किसान भाई बहन मन है, काम धाम में बहुत
1: जाए।
0: वगैरह जोर शोर में लेके जाती है नहीं।
1: हाँ
0: काली के हमरे कर भारत देश तो कृषि प्रधान देश भी है के, और हमरे कर किसान भाई बहन मन देखो अपने मन कर संगे संगे हमरे कर भलाई ले नाना रकम कर फसल को उत्पादन करते है रहती ला।
1: एकदम एकदम। और
0: और
1: संगे संगे देखो ने एखन जैसन मौसम है, हमरे मन के बरखा के तैयारी पहले ही करे के खा।
0: और देखो अभी बरखा भी पहुंचे वाला है बहन, तो देखो कम से कम हमरे कर जे खेती बाड़ी कर भाई बहन मन हथी अपन अपन खेत के भी तो तैयारी करे के में जुड़ जाए है नहीं। और
1: हाँ
0: कहा कि अभी से अगर खेत कर जुगाड़ बढ़िया से करवाए तो हमरे कर किसान भाई बहन के बढ़िया फसल भी भेटाई।
1: एकदम
0: और जब
1: एकदम
0: देखो अगर हमरे मन इतना खेती बाड़ी काम करबे करती है नहीं, और खेती बाड़ी काम करती, और देखो अगर उन्नत नस्ल कर बीज कर अगर चुनाव नहीं करती तो हमरे कर मेहनत सब
1: एकदम बेकार हो
0: बेकार
1: जाए।
0: भी गेला।
1: हाँ पैदावार कम हो जाए।
0: हाँ, और देखो अगर उन्नत किस्म बीज कर तैयार चुनाव कर अब तो ओकर गाछी भी बढ़िया हुई, पौधा भी बढ़िया हुई,
1: हाँ
0: और पौधा बढ़िया हुई तो जाहिर सी बात है बहन की उत्पादन बगरा हुई है नहीं।
1: एकदम
0: और
1: एकदम
0: उत्पादन बगरा हुई तो हमरे मन सब गदगद हो और खाए के लिए भी नाना रकम कर भेटाई है नहीं।
1: एकदम नगद बात कैसी।
0: तो देखो बहन, हमरे कर किसान भाई बहन के अगर खेती करती तो उससे पहले हमरे के जे बीज है से बढ़िया से चुनाव करे के चाहिए, जैसन कि
1: हाँ
0: प्रमाणित बीज और बढ़िया गुण वाला बीज होवे के चाहिए है नहीं।
1: एकदम एकदम
0: और इकर संगे संगे बीज के नाना रकम का रोग से बचा के भी रखे के चाहिए, कीड़ा
1: हमने
0: मारो
1: कीड़ा मकोड़ा नहीं
0: से नहीं
1: लगे।
0: लगे के चाहिए। और ये बात के भी ध्यान देवे के है कि जेकर अंकुरण क्षमता बगरा मात्रा में है से के ही चुनाव करे के चाहिए है नहीं।
1: हाँ
0: तो इस सब बात के ध्यान दो अब तो हमरे मन बगरा से बगरा मुनाफा भी कमा सकेला बहन। और चलो हमरे तो बातचीत करते हैं रहबले है नहीं,
1: एकदम एकदम
0: लेकिन समय से अगर कार्यक्रम कर और भी करब तो बढ़िया रही है
1: एकदम
0: नहीं। तो चलो आज हमरा और के नागपुरी लोकगीत सुना थी एग्नेश कुमार
1: हाँ
0: और संगी मन गावल गीत, और हमरे कर संगे संगे सुनवाइया किसान भाई बहन मन के भी सुनवाती है नहीं।
1: हाँ।

0: क्या बात है बहन, रोरे तो झूमे लई के लिए एकदम बड़ी जोरदार से।
1: एकदम एकदम नगद गीत।
0: और देखो गीत के माध्यम से हमरे कर मन में जो उमंग खा जाएगा, और कोनो काम के करत ही तो और करे कर मन करे ना, है नहीं?
1: एकदम
0: यानी कि
1: एकदम
0: गीत कर माध्यम से हमरे कर सब थकल मंदल भी दूर हो जाएगा और मन भी चंगा हो जाएगा और मन में छाधर हो गया। और देखो कोनो काम करे कर बढ़िया
1: मन
0: मौका भी
1: लागे
0: भेटेला।
1: ना।
0: अब दीदी हमरे तो गीत गोविंद करबे कर ली। अब देखो जैसे हमरे कर किसान भाई बहन मन तो खेती से जुड़ल आ हथी, और देखो अभी तो खरीफ फसल कर तैयारी में भी बहुत
1: हाँ
0: जोर शोर से लगी जा हथिन, कहे कि
1: हाँ
0: बढ़िया से तैयारी करे से बढ़िया रहेला, हमरे कर माटी कर जो उर्वरा शक्ति मन के भी बढ़िया रही, ओकर घास पतवार हो गला, घास मन के निकाय उकाय के यानी कि रेडी करे से बढ़िया रही ना, है नहीं? तो इसके बारे में हमरे कर किसान के जानकारी करवा थी। खरीफ आवे से पहले खेत कर तैयारी का तरी करल जाएगा, और क्या बतात हैं डॉक्टर परवेज आलम, और इनकर से बातचीत के हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि तपती गर्मी के बाद मॉनसून की आहट सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू होने वाला है खरीफ का सीजन। चाहे धान हो, मक्का हो या दलहन, अच्छी पैदावार के लिए केवल बीज बो देना काफ़ी नहीं है, उससे पहले खेत को तैयार करना सबसे ज़रूरी कदम है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम, एसोसिएट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। इनसे हम जानेंगे कि इस बार खरीफ की फसलों के लिए आप अपने खेतों को स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार करें ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है हमारे

0: कार्यक्रम में।
1: नमस्कार और जोहार किसान भाइयों।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरीफ सीजन की शुरुआत में किसानों को सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए, बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं
0: जी,
1: कि हम अपने खेत से साल भर जो है खेती करते हैं। साल भर का मतलब हुआ कि
0: सालों
1: भर, मतलब खरीफ में भी लेते हैं, उसके बाद रबी में भी खेती करते हैं
0: जी।
1: रबी के बाद कुछ किसान भाई सब्जी लगाते हैं, है ना, गर्मा खेती भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो मिट्टी है उसको हम लोग सालों भर काम पे लगाए रहते हैं
0: जी।
1: लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा मिट्टी जो हमको हमेशा सालों भर अनाज उत्पादन करके दे रहा है, इसका स्वास्थ्य का भी जांच होना चाहिए
0: जी।
1: या इसको भी कुछ आराम की ज़रूरत है, या इसको भी कुछ इस तरह का हम करें कि ताकि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ये कम ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी मिट्टी सालों साल आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, और आपका धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होने लगा
0: जी,
1: तो लास्ट में क्या होगा, कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आप उतना ही सारा इनपुट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे बीज का प्रयोग कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अब खराब होने चला है
0: जी।
1: तो इस स्वास्थ्य को बीच में हमको बचा के रखने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सही समय है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बचाएं ताकि हमारा जो आने वाले जो खरीफ सीजन में हम फल लगाएं, जो पौधे हम लगाएं, जो भी खेती करें वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हमको दे
0: जी। तो गर्मियों में गहरी जुताई का खरीफ की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके फायदे क्या हैं, सो बताइए।
1: हाँ, अब है कि इसी क्रम में हम आगे कहना चाह रहे हैं कि जो किसान भाई को हमने सलाह दिया आपके माध्यम से कि मिट्टी का सेहत को अच्छा रखना है
0: जी,
1: है ना, मिट्टी को बीमार नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि खेत का साल में एक बार कम से कम गहरी जुताई करें
0: जी,
1: और वो गहरी जुताई करने का जो समय, उचित समय है वो अभी है, है ना
0: जी जी।
1: अब है कि गहरी जुताई से मतलब क्या होता है, मैंने कितना जुताई, कितना दूर तक हम जुताई करें जिसको हम मान लें कि ये गहरी जुताई हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि किसान भाई जब धान या मक्का या कोई भी फसल लगाते हैं तो उस समय भी खेत की जुताई होती है
0: जी,
1: है ना, तो ये जुताई जो है 4 से 5 इंच की जुताई होती है और ये गहरी जुताई में नहीं आती है, ठीक है। तो गहरी जुताई हम तब कहेंगे कि कम से कम 10 इंच से लेके 1 फुट तक
0: जी
1: नीचे अगर हम जा रहे हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये गहरी जुताई के श्रेणी में आएगा। अब फिर अगला प्रश्न ये दिमाग में आता है कि भाई इतना ज़्यादा अगर गहरी जुताई करना है तो हम कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम गहरी जुताई कर सकते हैं
0: जी,
1: है ना, क्योंकि किसान के पास जो देसी हल है या हमारे पास जो ट्रैक्टर में लगने वाला पीछे जो हल लगता है
0: जी,
1: उससे अधिक से अधिक 4 से 5 इंच ही जुताई कर सकते हैं, है ना। तो इससे आप गहरी जुताई नहीं कर सकते, इससे आपको फिर दूसरा मशीन आपको लेना पड़ेगा, उसका नाम है मोल्ड बोर्ड प्लाव
0: जी,
1: है ना। तो ऐसे समझिए कि ये प्लाव जो है ऐसा काम करता है कि जो मिट्टी को कम से कम 1 फुट नीचे जा करके इस मिट्टी को गहरे ढंग से जोतता है और साथ में साथ जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर ले आता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले आता
0: जी,
1: है ना। तो इसको हम बोलते हैं गहरी जुताई, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जिस पर्पस के लिए आप करना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए करना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य आपका सफल होगा।
0: तो इससे क्या फायदा है गहरी जुताई से?
1: हाँ, आप देखिए, अब तो हमारे कहने के हिसाब से किसान भाई ने गहरी जुताई कर लिया
0: जी,
1: आपने भी बता दिया
0: जी,
1: लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई गहरी जुताई करने

0: से लाभ क्या है, है ना?
1: जी जी
0: देखिए, गहरी जुताई जब करते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा ना कि मिट्टी को नीचे से ला करके ऊपर छोड़ता है, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे दबाता है।
1: जी जी
0: तो साल भर खेती करने के दौरान अगर जितने भी खर पतवार के जो बीज हैं, जो कीड़े मकोड़े के जो अंडे लार्वे हैं, है ना
1: जी,
0: वो सब मिट्टी में उलट पुलट हो जाते हैं, ठीक है, उलट पुलट हो गए। जब उलट पुलट हो गए तो क्या होगा, वो सब वहीं पर खत्म
1: हो जाएंगे।
0: तो एक तो इससे ये होता है कि जब आप गहरी जुताई के बाद जब खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा खर पतवार या बहुत तरह का बीमारी ऐसे ही नहीं आएगा।
1: जी,
0: पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा यह है कि आप जब एक फीट के मिट्टी को जब आप जोत रहे हैं तो वहां तक की मिट्टी क्या हो गई, हल्की हो गई।
1: जी,
0: है ना? तो हल्की होने से क्या लाभ है, हल्की होने से ये लाभ है कि जो भी आप फसल वहां लगाएंगे उसका जड़ जो है बहुत आसानी से नीचे जा जाएगा।
1: जी, जी।
0: तो आपको ये पता है कि जड़ जितना आसानी से नीचे जाएगा उतना अधिक मात्रा में उर्वरक वो अपने पौधों के लिए खींच सकता है, पानी को खींच सकता है, और आप देखेंगे कि जो पौधे का हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है और अल्टीमेटली पैदावार बढ़ता है।
1: जी,
0: है ना? दो हो गया। तीसरा, गर्मी के शुरुआत में हम कह रहे हैं कि गहरी जुताई करिए, और इस जुताई को हम कह रहे हैं कि जब तक वर्षा मानसून आ नहीं जाता है तब तक आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना?
1: जी,
0: यानी कि 1.5 से 2 महीना जो है आप वहां पर उसको हम छोड़ने के लिए कहते हैं। इससे क्या लाभ है, इससे ये लाभ है कि जो भी प्री मानसून का पानी या मानसून का पानी जब खेत में पड़ेगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है किसान के खेत का पानी उसके खेत के नीचे जाएगा।
1: जी,
0: है ना? और जब नीचे जाएगा तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक अच्छी होगी। तो ये सब फायदे होते हैं गहरी जुताई करने से, और हम आपके माध्यम से किसान भाई को सलाह दे रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार, ना हो सके तो कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार तो जरूर करना चाहिए ताकि आपका मिट्टी का सेहत अच्छा बना रहे।
1: जी, अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन।
0: जी,
1: तो किसान तो गहरी जुताई कर लिए, अब इसमें ये बताएं कि खेत में गोबर की खाद या हरी खाद का उपयोग किस प्रकार और कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए।
0: लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम कहते हैं कि भाई इसमें हरी खाद को आप जरूर डालिए। तो हरी खाद में क्या आता है, हरी खाद में आता है ढैंचा।
1: जी जी,
0: तो ढैंचा को क्या करना है कि गहरी जुताई करने के बाद अगर थोड़ा सा नमी, अभी आप देख रहे हैं ना बारिश हल्का हल्का हो जा रहा है,
1: जी जी,
0: है ना, तो इस तरह का नमी अगर आपको मिलता है तो ढैंचा को खेत में ऐसी छींट दीजिए, जितना आपके पास है उसको छींट दीजिए खेत में।
1: जी,
0: तो आप देखेंगे कि 10-15, 1 महीना, 40 दिन होते होते ढैंचा का फसल जो है कम से कम 1.5 फीट का 1 फीट का हो जाएगा, है ना?
1: जी जी,
0: ढैंचा का फसल। और जब ये फसल तैयार हो गया तो जब आप धान का खेती करने जाएंगे उस समय जब आप पानी खेत में, आप तो रोक के रखे हैं पानी,
1: जी,
0: तो पानी के साथ ढैंचा को उसी में जोत देना है।
1: अच्छा,
0: है ना? ढैंचा को मिट्टी के साथ पानी के साथ जोत देना है और उसको फिर वहां सड़ने छोड़ देना है, ठीक है? तो 1 सप्ताह 10 दिन में आप देखेंगे कि ढैंचा का जो फसल जो आप जो अपने मिट्टी में जोत दिए थे वो एक अच्छा खाद बन गया वहां पे।
1: जी,
0: इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी का संरचना भी काफी सुधर जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो दो बातों का ध्यान जरूर रखें कि हरी खाद, ढैंचा का प्रयोग करें, है ना, ये बहुत आसानी से हर जगह मिलता है और इसको लेके आप उसको खेत में जोत सकते हैं।
1: किसान भाई अतिरिक्त आय के लिए कौन सा कृषि संबंधित कार्य करें?
0: हाँ, देखिए ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको, हम लोग को भी पता है कि देखिए किसान के खेत में अभी फसल नहीं है।
1: जी,
0: है ना? अभी फसल नहीं है तो उनका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, है ना? पैसा तो कुछ चाहिए कमाने के लिए। तो उसके लिए हम किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए, झारखंड सरकार का जो गांव में जो रोड होता है, है ना, और रोड के बगल में किसान का खेत होता है, ठीक है
1: जी,
0: और किसान का खेत और रोड के

0: बीच में कुछ जमीन ऐसी होती है जिसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं,
1: जी जी
0: है ना। तो उस जमीन पर अभी आदमी को चाहिए कि छोटा छोटा गड्ढा का निर्माण करें, है ना। तो गड्ढा का निर्माण जब करेंगे तो उसमें लागत लगेगा, पैसा लगेगा, है।
1: जी
0: तो किसान अगर उसमें जाकर के मेहनत करता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा डेली मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ही पूछेंगे कि छोटा गड्ढा 4 फीट बाई 4 फीट का हम बनाने बोल रहे हैं, मान लीजिए एक गड्ढा, तो इसका क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा है।
1: जी
0: तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गांव में इस तरह का जहाँ जहाँ रोड है, आप ज़रा कल्पना करके देखिए, वहाँ वहाँ साइड में अगर आप दोनों साइड में इस तरह का छोटा छोटा गड्ढा बनाते चले जाते हैं गर्मी भर,
1: गर्मजुरवा जमीन में।
0: गर्मजुरवा जमीन में, और जब बरसात शुरू होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उस गड्ढे में पानी जमा होगा,
1: जी
0: जमा होगा ना। तो पानी तो आपके पास स्टोर करने का जगह मिल गया, नहीं, जमा करके रखने का जगह मिल गया। अब जब झारखंड में आप देखते हैं कि फसल लगाने के बाद अपलैंड में धान लगा लिए और उसके बाद 15-20 दिन के बाद वहाँ पर सुखाड़ पड़ने लगता है ना,
1: जी
0: पानी नहीं रहता है। यहाँ अपलैंड धान की भी मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर अपलैंड धान जो है आप देखेंगे कि 1 महीना का जब धान होता है तो उस समय वहाँ पानी का समस्या होने लगता है, अगर बीच में वर्षा रुक गई तो।
1: जी
0: तो उससे बचने के लिए ये जो गड्ढा हम बनाए हैं और यहाँ जो पानी जमा है, इस पानी को आप चाहें तो वहाँ पर अपने फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेज आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को खरीफ के मौसम में खेत की तैयारी करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों।
2: तो बहिन एखन हमरे मन बहुत नगद जानकारी करवा ली। खरीफ फसल आवे से पहले खेत का तैयारी का तरी करल जाला बतात रहे डॉक्टर परवेज आलम और इनकर से बातचीत के रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो चलो अब हमरे मन बेरा बाचल है तो और गो लोकगीत सुनने वाला खोरठा में है नी
3: हाँ हाँ
2: सुकुमार और संगी मन गावल गीत।
4: ए जा

तो बहिन हमरे मन खन खोरठा में कृषि विकास गीत सुनत रही सुकुमार और संगे मन गावल गीत और एक रहे संगे हमरे कर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम सिर लालक और हमरे और करेला हमारे दुनिया कार्यक्रम में और

0: लेकर जे सुनवाइया भाई बहन मन के मन है सेम के फिर से जोहार है नी।
1: जोहार। हाँ,
0: और
1: और स्वागत है।
0: और देखो बहन अभी हम लेकर ऐज कर बेरा में तो भाग दौड़ कर बेरा भी है के है नी। और देखो सब मन अपन अपन काम धाम में जोर शोर से लगले हथिन।
1: हाँ
0: यानी कि बिहान हो गई ला और जे घर में है से मर कोनो ना कोनो काम में जुड़ ले रहती ला है नी। और
1: जोला
0: जब तक नहीं सूती ला तब तक तो कोनो में ना कोनो काम में लगने
1: काम
0: ही।
1: है, ये है, चाहे वो बूढ़ा हो छवा हो कोई हो। हाँ
0: सही बात रहो रे खाली यानी कि सब कर कोनो ना कोनो काम है
1: हाँ
0: और जुड़ल ही और सब अपन अपन काम ही कितना व्यस्त
1: हाँ
0: है कि हमरे मन बता नहीं सकले। और देखो यही बीच कभी कभी ऐसा हो जाए कि कोई काम सही समय पे नहीं हो पा रहे तो हमरे कर मन कितना तनाव से भर जा रहा है ना।
1: एकदम एकदम
0: और इकरे वजह से हमरे कर शरीर में भी नाना रकम कर कितना तनाव बढ़ते जाए और यही कि ये हमरे कर मनुष्य जाति कर शारीरिक और मानसिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है कि और कि हमरे मन सही रूप से अगर प्रयोग नहीं कर पा रही ला तो हमरे कर बीच में बहुत बड़ा समस्या भी हो जाएला और तनाव ग्रस्त हो जाएला। और देखो इकर माध्यम से हमरे के नाना रकम कर बीमारी भी हो जाएला और
1: एकदम एकदम
0: बरन बरन कर किस्म किस्म कर
1: मन अगर नहीं सही
0: हाँ
1: रहल तो
0: जैसन के बगरा काम करे कर दबाव हो जाएला आर्थिक समस्या भी बढ़ेला
1: हाँ
0: व्यक्तिगत रिश्ता भी बढ़ जाएला हमरे कर बीच में। और हम ऐसा हो गया कि स्वास्थ्य हमरे कर बढ़िया नहीं रहला सेकर चलते भी चिंता हो जाएला। सोशल मीडिया के माध्यम बगरा होवे से भी
1: ये तो
0: हमरे कर मन
1: एकदम
0: तनाव हो
1: ना।
0: जाएला है
1: हाँ
0: नी।
1: ये तो सबसे बड़ा कारण है कन।
0: और देखो तनाव अगर बढ़ते जाए तो हमरे कर मन के तो कोनों में काम करे के लिए लगबे नहीं करी है नी।
1: ना
0: तो इके हमरे के ध्यान में रखे के और हमरे मन तनाव से तो पूरी तरह से बच नहीं सकीला लेकिन हमरे मन अपन जे आदत है जीवन शैली है से कर से रोक सकीला है नी।
1: हाँ उनके बदलाव करके।
0: जैसन कि शारीरिक गतिविधि के माध्यम से हमरे मन अगर रोज दिन कसरते करे थे योगा करे थे तो हमरे कर शरीर कर मेंटेनेंस बढ़िया हुआ
1: हाँ
0: थे
1: एकदम।
0: और
1: आ
0: शरीर में
1: खान पान अच्छा होना चाहिए।
0: एक संगे हमरे कर संतुलित भोजन अगर हमरे के भेटा थे तो हमरे कर शरीर बढ़िया रही। और रोजे दिन एकर माध्यम से देखो बहन हमरे कर अगर शरीर बढ़िया रहते तो कम से कम हमरे के कोशिश करे थे कि 7 से 8 घंटा तक एकदम बेफिक्र हो के नींद जागते ही है नी।
1: एकदम
0: काली के अगर हमरे मन भरपूर नींद भी लेवा थी तो हमरे कर कायगो बीमारी दूर हुआ थी।
1: ये तो बात नगद कहली।
0: और एक संगे संगे हमरे के खाक पीएक से भी बाचे के ऐसा ये कोशिश करे थे कि जे हमरे बाहर
1: बाहरी चीज के नहीं खावे के।
0: बाहरे बाजार से जे खुला में है से उनके खाते से उनके खाक से परहेज करे थे जंक फ्रूट से बाचे खे है नी।
1: हाँ
0: और कोशिश करे थे कि अपन घर में जे गर्मा गर्म बनाते से हमके अगर हमरे मन संतुलित भोजन का रूप में खाते दिन रहे तो बढ़िया रही हमरे कर
1: हाँ
0: सेहतो बढ़िया रही है नी।
1: उन्होंने जब भी खाओ गरम खाना के खाओ,
0: और
1: बासी
0: ताजा ही
1: नहीं के
0: खाते ही
1: खाए
0: है नी।
1: के। हाँ
0: और देखो अगर मानसिक तनाव हुआ थे तो हमरे के अपन जे विशेषज्ञ है से मन से भी सलाह भी लेवे चाहिए है नी।
1: आ नहीं देखो घर में भी हमरे मन के बूढ़ा बुजुर्ग है, से मन जगह भी बैठ के बात
0: एकदम
1: करे।
0: रोले नगर कहली कहली कि
1: हाँ
0: बड़ बुजुर्ग इनके तो बड़का बेस अनुभव रहेला है नी। तो
1: अनुभव
0: मन हमरे कर
1: रहेला,
0: मर के बढ़िया से आगे बढ़ा सकीला।
1: मन के बात के मन में नहीं रखे के।
0: और हो जाएगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि जे अपन करीबी रिश्ता रिश्तेदार हैं संग साथी मन है सेहो मन के हम अपन बात के बताए के बता देव अब तो मन कितना हल्का हो जाएगा है नी।
1: हल्का हो जाएगा।
0: तो ये सब बात के हमरे के ध्यान देवे के बहन और कोशिश करे के कि तनाव से हमरे के बचे के। और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि रिज रंग भी सुना थे तो हमरे कर बहुत सारा समस्या दूर हो जाएगा है नी।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: चलो हमरे मन रिज रंग करा थी समस्या के दूर करे खातिर और
1: हाँ
0: हमरे कर
1: हाँ
0: कार्यक्रम के ही आगे करी ना आगे बढ़ाई ला है नी। और
1: हाँ
0: चलो नागपुरी लोग सुनी ला जानकी देवी और संगी मन गावल गीत।
1: हाँ

0: तो एखन हमरे मन नागपुरी में लोकगीत सुनत रही जानकी देवी और संगे मन गावल गीत बहुत बढ़िया रिज रंग खातिर गीत रहे बहिन और इस माध्यम से हमरे के बढ़िया संदेश भी भेटालत। अब चलो हमरे मन एगो जानकारी भी करवाइला पंच परगनिया में सकारात्मक सोच रखे है और इके बतात हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी गुप्ता।
1: बेजिन महत्व है जोखन हमरे सोच सही होला चाहे जोखन हमरे सकारात्मक सोचीला होले हमरे सब काम गिलाऊ सही होला। जेकर सोच नकारात्मक होला उ सभे चीजे नकारात्मक चीज खोजेला जेटा खातिर उकर सब काम सही ढंग से नाई हो पारेला। हुआई सकारात्मक सोच राख कोन हमरे अच्छाई खोजीला और जबे हमरे सोच सकारात्मक बन जाएला तो उकर परिणामो सकारात्मक मिले लागेला। सोच के अंतर होला जहाँ एक टा विद्यार्थी क्लासमैन अच्छा सोच कोन अच्छा नंबर आनेला तो केउ क्लासमैन फेल कर जाएला। जदि अपन जिंदगी में कुछ पाना है होले अपन सोच के सकारात्मक बना

हुई। आज तो ऐसा माहौल बनत के जाते कि छोटे छोटे बातें आदमी अपन नकारात्मक सोच के कारण जान दे देते, आत्महत्या कर लेते। आत्महत्या तो समस्या के समाधान ना लगे, इटा कहाँ नहीं कहाँ नकारात्मक सोच के परिणाम है के जेटा के कारण जीवन उजाला के बदले अंधार बाटे जाते। सकारात्मक सोच लेक जिंदगी आगू बाटे बढ़ेला, निराशा लेक बचाएला। हाले हाले तो तीनटा घटना ऐसन घटलो कि आदमी के दिल के दहलाए देलो। आत्महत्या अपन रूप बदल कर पूरा परिवार के निगले लाइगे, कारण कर्ज हो चाहे पारिवारिक द्वेष। बड़ा सोचे लायक बात है के कि का रकम पूरा परिवार सलाह कोर कौन एके संगे जान गुचाते। कहाँ नहीं कहा नकारात्मक सोच उमन के निगलोते। सकारात्मक सोच तो जिंदगी जिए के रास्ता दिखाएला, न कि जिंदगी के खत्म करे कहेला। आखिर इटा जे कहल जाएला कि सकारात्मक सोच जीवन के खुशहाल बनाएला, इटा में बहुते दम आहे। जैसन कमजोर लोग के बीमारी चाड़े धोरेला, से रकम नकारात्मक सोच वाला के परेशानी चाड़े घेरेला। आपन द्वारा करल पाप के जिम्मेदार उ निजे के भोले कोनोई मजबूरी में उ पाप करू। नकारात्मक सोच बाटे जाय कोन जदि केउ अपन जीव गुचाई तो इटा चिंता केरे बात है के। सकारात्मक सोच केर शुरुआत सफलता केर पहिला सीढ़ी है के। दुनिया में खाली एके आदमी केकरो तकदीर बदले पारे उहे है के, यानी अपन हाथ लेके अपन तकदीर के बदले पारे। असफल होना हायर ना लागे, बरन असफल होय कोन दोहरा प्रयास नहीं करना हाई रह के। आर जे आदमी टा जीवन में संघर्ष नहीं करी उस सफलता केर मजाऊ नहीं ले पारी। सुख केर अनुभव खातिर दुख होना बहुत जरूरी है के। नकारात्मक विचार केर संगे आदमी सकारात्मक जिंदगी नहीं बिताए पारे। बीतल समय तो हमरे पास नहीं है, किंतु जीते कार हारे खातिर आने वाला समय हमरे पासे आहे। आदमी जेटा चाहेला उटा खातिर उके मेहनत करे खोई, बिना संघर्ष कर कोनो हासिल नहीं हो पारे। आदमी के मजबूत आर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जदि केउ भटकाए चाहिए तो आदमी के अपन ऊपर भरोसा होना चाहिए कि उ सही रास्ता में चलोते चाहे सही काम करोते। जदि आदमी सकारात्मक काम करे चाहोते तो उके अपन नजरिया सकारात्मक बनाए होई। सकारात्मक होना नकारात्मक होए के लिए बेसी बेसे के। अपन भीतरे एकटा ऐसन सोच जागाय खोई जेटा खुशी आर आनंद देव, फिर उ आनंद टा आदमी के दुख दर्द लेक दूर रखी। आदमी जेटा चाहेला उटा पाए खातिर जे काम टा करेला उटाय पूरा विश्वास रखू। सकारात्मक भावना अपनाओ, सफलता निजे उकर दुआरे आवी। एक बार जदि आदमी अपन नकारात्मक सोच छोड़कन सकारात्मक सोच अपनाए ले तो सकारात्मक परिणाम मिले केर शुरू हो जाए। सफल होय खातिर कुछ ऐसन उपाय खोजे होई कि आदमी अपन लक्ष्य में बांधाल रहो। कठिन दौर लेक गुजरत के अपन लक्ष्य के भूलुक नाई। जीवन इटाई है के इटा सोचना चाहिए कि जा जेटा होलोक बढ़िया होलोक। नकारात्मक मेहनो सकारात्मक खोजे चाहिए, जिंदगी भरपूर जिये चाहिए। सकारात्मक में ध्यान देख चाहिए। सकारात्मक सोच के संगे आदमी हर काम टा बढ़िया लेक करे पारे जेटा नकारात्मक सोच कौन नहीं हो पारे। बिहाने उठोत के आदमी के पासे दुईटा सोच रहेला, एकटा सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। आशावादी आर निराशावादी। आशावादी होना एकटा स्वस्थ दृष्टिकोण है के। मोह माया के बिना दुख नहीं होला, दुख जो भी होला मोह माया लेके होला। आर दुखी हो कोनी आदमी नकारात्मक सोच बाटे बढ़ेला, उ रास्ता टाइ नहीं चले चाहिए जेटा में आदमी के डोर लगाई, बल्कि उ रास्ता टाइ चले चाहिए जेटा में प्रेम लगाई। उ रास्ता में चले चाहिए जेटा में खुशी आदमी के लगाई। सकारात्मक सोच एकटा शक्ति है के, एकटा शस्त्र है के जेटा भगवान आदमी के दे। इटा के उपयोग कर कौन आदमी बड़े लेक बड़े लड़ाई में विजय करेक पारे। जीवन में बेजीन किस्म के दुखा है, ऐसा एकोटा आदमी नहीं खे जेके जिंदगी में
कोनोई दुख नहीं है, लेकिन सभे लोग परेशान नहीं देखायलान। परेशानी के समय मेहनो जे आपनटा के काबू में राखेला उमन परेशानी संगे लोड़कन सफल हो जायला।

0: सकारात्मक विचार भगवान बाटले कायला आर नकारात्मक सोच शैतान केर काम करेला। सकारात्मक सोच वाला जिंदगी में सफल होयलन आर नकारात्मक सोच वाला परेशानी में डूब जायलन। आदमी केर सोच जैसन रही उसने वो व्यवहार कोरी। बढ़िया सोचले बढ़िया हो, खराब सोचले खराब हो, सभी बात केर दुईटा माने होयला, एकटा बढ़िया एकटा खराब। बढ़िया विचार चाहे सकारात्मक विचार आदमी केर पासे हो तो वो कोनोई काम के आसानी से करेक पारे। सकारात्मक सोच दूसरा के प्रेरित करे और अपन जिंदगी में कुछ नवा करे के उमंग देला। हमरे के नकारात्मक सोच के बदल कौन सकारात्मक सोच बाटे ले गायला सकारात्मक आदमी के असाधारण सफलता खुशी और स्वास्थ्य के अनुभव होयला और निश्चय उमन जीवन के सभे बाधा के पार कर जायला। दुखी रहना एकटा आदो थे के खुश रहनाओ एकटा आदो थे के एभार जेके जेटा बेस लागेला उ उटा केर बाटे बढ़ेला। मन केर पासे तो सोभे आहे जे जोन बाटे चाहेला चुल जायला। केउ ठोकर खाय कोनो आगु बाटे बढ़ते रहेला आर केउ एके ठोकरे बैठ जायला। आदमी के सोचेक चाही कि उकर हर दिन बढ़िया हो, उ एक एक दिन के बढ़िया तरीका से जीवुक। भूतकाल लेक सीखेक चाही, वर्तमान में जियेक चाही आर भविष्य केर आशा करेक चाही। मन में सोच उठते रहेक चाही। हमरे सब जानीला कि का है कि, लेकिन इटा नहीं जानीला कि हमरे का करे पारबे। सकारात्मक काम करे खातिर हमरे के सकारात्मक विचार रखेक चाही। सकारात्मक जीवन में नकारात्मक मन के कोनो जायगा नहीं है। सकारात्मक नजरिया सभे आदमी के समस्या ले दूर नहीं करे पारे, किंतु ई सोचता आदमी के हिलाक खातिर काफी है के। यदि आदमी कोनो चीज के पाए खातिर ठाड़ नहीं हो तो वो जरूरे एक दिन गिर जाए। सही समय के सबसे बड़े खोज इटाई है के कि आदमी अपन सोच के बदल कौन अपन भविष्य के बदले पारे। सेव गिरोत के तो करोड़ों आदमी देख रहे, लेकिन उठा के समझे कर कोशिश न्यूटन एकलाई कर लो। आखिर काते हैं न्यूटन पासे एकटा सकारात्मक सोच रहे जेटा के सहारे वो एक नियम बनाए देलोक जेटा के आज दुनिया में मानल जाते। सकारात्मक सोच दुनिया के बदले के क्षमता रखेला। दुनिया के खुशहाल बनाए में सकारात्मक सोच के रे योगदान है। एकोटा उदाहरण ऐसो निखे जेटा में नकारात्मक सोच लेक आदमी के जिंदगी खुशहाल बोईने। निराशावादी आदमी के हर समय मुश्किल देखायला आर आशावादी आदमी के मुश्किल मेहनो अवसर देखायला। तो इटा सोच सोच के फरक है के केउ कहेला गिलास में आधा गिलास पानी आहे आर केउ कहेला आधा गिलास खाली आहे। इतने टा फरक आहे सकारात्मक आर नकारात्मक सोच वाला आदमी में। जे आशावादी है के उके भरोलटा पहिले देखायला और निराशावादी के खालीटा पहिले देखायला। आदमी के माने खोई कि जिंदगी जिंदा है के और इटा बरकरार रखे खातिर उके विश्वास बनाए रखे खोई। सकारात्मक सोच उके जिंदगी जिए के उत्साहित करी। आशावादी सोच रखे खातिर आदमी के अपन आई खार मन खोल रखे चाहिए। सकारात्मक सोच एकटा शक्ति है के जेटा केर आधार में इटा कहल जाय पारे कि सकारात्मक सोच लेक जिंदगी बनी खुशहाल।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: तो एखन हमरे मन पंच परगनिया में वार्ता सुनत रही, सकारात्मक सोच रखे के, और इके बता रहे हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी गुप्ता। बहन सही में बहुत नगद जानकारी
5: बहुत, और बहुत अच्छा।
4: हमरे मन कोनो काम के कर थी और अगर सकारात्मक सोच रखा थी तो कितनो भी बड़ काम है, कितनो भी बड़ परेशानी है, हमरे मन अहले से परेशानी से भी निजात पा सकेला और सफलता भी भेटा सकेला है नहीं। और सब बढ़ते विकास का डहर में आगते आगे हमरे मन बढ़ते है जाएगा।
5: हाँ।
4: तो बहन चलो अब हमरे मन को कुरमाटी में लोकगीत सुनीला। सीधा महतो और संगी मन गावल गीत।

0: तो वही खन हमरे मन सुनत रहें कुरमाली में लोकगीत सीताराम महतो और संगी मंगनक कावल गीत और एक रहे संगे हमारे दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरालक और हमरे मन दूसर दिन नवा नवा जानकारी कर संगे फिर भेटा है
1: हाँ, हाँ.
0: और हमरे कर कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजय कुमार लाल। चलो तब चलिक चाहिए
1: हाँ,
0: जोहार।
1: जोहार.

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा, जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा, राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। एक रिपोर्ट।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थाई आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्षों ने लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और नए अवसर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया।
3: चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। एक चिकित्सक के हाथों में केवल उपचार की क्षमता नहीं होती बल्कि रोगी को आशा, विश्वास और जीवन देने की शक्ति भी होती है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और भरोसा भी चाहिए होता है।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने यह जानकारी दी और विश्वास व्यक्त किया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री सकारात्मक पहल करेंगे। साथ ही राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावासों की स्थिति

0: शक्ति और आश्रम स्कूलों के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने तथा कल्याण विभाग के विद्यालयों में SIR और जनगणना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा वितरण अभियान में तेजी लाने, हॉस्टलों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने तथा कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग स्कूलों में युवकों की भागीदारी बढ़ाने, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव तैयार करने और कल्याण विभाग के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची के ओरमांझी क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक की लागत से कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें डीप बोरिंग, स्नानागार और शौचालय, सामुदायिक भवन कार्य शामिल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुलाडी चारेडी आदिवासी टोला सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व ग्रामीणों से किए गए सड़क निर्माण के वादे को पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण से हजारों ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा तथा आदिवासी बहुल गांव मुख्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे। रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने निदेशक कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और पीजी डॉक्टर भी शामिल रहे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
1: हमारे सॉफ्टवेयर में और झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिसमैच, जिस वजह से हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे, तो उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की और हमने भी बातें कर ली हैं। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि परमानेंट आईडी जो है वो ट्रेजरी ही दे दे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत राज्य के कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। रांची जिला वुशु एसोसिएशन और झारखंड वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बरसामुंडा स्टेडियम में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 132 छात्रों को दी डिग्रियां। तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ समाज सेवा की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा। राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: दादी, कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह। थैंक्स गप्पू।

0: बचा लिया, ये देख तेरी समझदारी का फल।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ सुना। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव पर चिंता जताते हुए लोगों से सजग रहने, खुद को हाइड्रेट रखने और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप में भारतीय एथलीट गुरविंदर सिंह के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इससे मध्यम वर्गीय खेल प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ेगा।
2: जो साधारण परिवार के बेटे पे जब उनके अंदर में जब लगन होता है, एक जुनून होता है, तो फिर असाधारण वो काम करके दिखाते हैं। और उन दोनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात भी की, दोनों को प्रेरित भी किया और साथ साथ और लोगों को भी खेल के प्रति रुचि लोगों के बढ़े तो उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया।
1: जामताड़ा जिले की बेटी देवासी हेम्ब्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में आयोजित एयर गन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए देवासी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची में देवासी हेम्ब्रम को सम्मानित किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं जिनमें दुनिया के सामने कुछ कर दिखाने की क्षमता है, है सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाने की।
3: हमारे झारखंड की बेटी, देश की बेटी और विशेष करके मेरे विधानसभा क्षेत्र की बेटी कुंडहित की देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है और गौरव का विषय भी है। और ये देवासी एक नया संदेश दी है देशवासियों के सामने, राजवासियों के सामने और लोगों के सामने, जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है।
1: रांची सिविल कोर्ट सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
4: परिवार बिखरेगा तो समाज बिखर जाएगा, तो हम लोग पहला कोशिश करते हैं कि परिवार बिखरे नहीं, बहुत समझाने का कोशिश करते हैं कि आपस में जुड़ो, परिवार है, परिवार बढ़ाओ। जहाँ नहीं होता है, जहाँ दोनों लोग एडमेंट होते हैं हमको नहीं रहना है, फिर हम लोग फिर दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में, अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता है, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया तो उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है फिर करो, रिपीट करेगा, तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है, तो सही होना तो जरूरी है।
1: विश्व थैलीसीमिया दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय थैलीसीमिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन रांची में किया गया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने थैलीसीमिया के प्रति समाज में जागरूकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर सदर अस्पताल रांची के उपाधीक्षक और स्वयं सेवी संस्था लहू बोलेगा के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम उरांव भाषा में है।

0: आदिवासी अखड़ा मिनो और माँ आयो बाबा भाई बहन हरा छोटे बुचू बगारिन ए नेली ग्रेसिक का
1: शुमल लकड़ा
0: तरती ओ लगी अरा मंजरा एम को कदम का नीम और मर ई दावले रा दर होतंग अन्नेम एम हूँ दावले रा दम इन्नेला चेप हूँ बरा लगे हमाझे मझे इकला किला बिड़िना हो रही नाम इर्दत का एका एका आलय अकय कुहा ओहदानो नलक नन्ने आर गुया उर्मी बरन गही सुख सुविधा एरा गे हखरी कामला
1: हाँ नहीं
0: तो इधी गही अड्डा नू अड़सागे नमागे हूँ अकय मेहनत कामना मनो इंदिरगे का आर घी राना उज्जना उकुनाती पता लगे का आर एकासे रने इन्ना नाम परिश्रम से ही सफलता संभव अरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिखा पत्नो कथा ननोतु मेहनत अदिन बहुत एका आलस अपन उद्देश्य नन खखा गी मेहनत नंदस मेहनत दिम आलय गही उन्नति गही उन्टा उन मात्र गही साधन रचा मेहनत नन्नय आर गही उर्मी सुविधा हगरी नमागे कठिन ते कठिन नलखन ननर के हूँ संभव खखा उमुदत
1: दो कथा बाज के दे मेहनत उन्टा आलय गी सीढ़ी ही के आलय गे इंद्र इम भी नलखन सलने मन बुझना चाहिए इंद्र के का सन्नी नलक दिम किरमे किरण में परदनम काली हरा आज पोठार ई और उन्टा कोहा मुठान हूँ लय हुई
0: दो कथा बाज के नमागे एक अम नलखन उत्था मल बुझना चाहिए कब है
1: हाँ दे
0: इंद्रगे का मेहनत नन्ना गही क्षमता हूँ
1: रहना चाहिए
0: काला कोढ़ियार और आगे के इधर मलखा हूँ मालिम मनो
1: मालिम मनो
0: जीन सुखनो या बिदर हो लेते सन मनो भाई
1: हाँ सुखनो या बिदर तो मेहनत मन लो तो खान पा हूँ दो महा खकरो
0: हाँ मेहनत गए नतीजा नू अड़सा गे आर गे अकाय मेहनत नन्ना पड़ा रो कठिन भाई
1: कठिन
0: मेहनत ते आलाय अपन पुना जिंदगी कम ना कम आंगो नहीं आरा मेहनत कही महत्वन हो खखांगो नहीं
1: हाँ दही
0: या बुझ रहा हूँ ना क्या भाई
1: हाँ और संगम दे बचू तुड़ु खद्दे रेन नमा ए दत्त और पिल्ले जो खे रेन सन्नी तिम आर इन मेहनत नन्ना सीख पाना चाहिए और सन्नी तिम किरमे किरमे मेहनत नन्ते कौर तो अन्य ती तमहे लक्ष्य और जे तम तुलुंग ईर का नाय आउंदा गुड़ सी अरसा गे सेब्बा मनो और उन मेहनत नन्ना ती तंग आज यानु आत्मविश्वास बढ़ रही काली
0: हाँ दाव कथा बाच के ने कि इंद्र के की इबड़ा नालक उंधुल तमल्ली बाई कि धीरे धीरे रोज रोज नन तेम ये काम बढ़ रही काली का माला
1: हाँ दे
0: अन्नु माला बढ़ रहे क्या नहीं अंगे नमागे उर्माई गे सफलता खखा गे अकाई चाड़ रही ये दिन उन्टा मजबूत लक्ष्य होना चाहिए का माला मतलब हाँ इन्ना नानोम नीला नानोम बनाते काम
1: टालते मारना चाहिए
0: माल रहना चाहिए अनु लगन मनना चाहिए और मेहनत नन्ना ही उन्टा इंद्रापन चाड़ रहना चाहिए भाई अपन बुद्ध लिखा नलक कम ना चाहिए दूसरा ही कथन मल मिलना चाहिए कब आए सही अड्डा एक अम लक्ष्य नन खखा के अकय कुहा चाभी ही के
1: हाँ दे जिंदगी नु एक अम भी क्षेत्र सफलता हखा के कड़ी मेहनत सही रास्ता अरा हार मल मनना चाहिए आलाएगे और हड़बड़ना मा चाहिए धैर्य और जीत ती मेहनत नन्ना चाहिए कि ई आलू इंगा खखना रही तो खखना रही अदिन लगातार उल्ला माखा मेहनत नन्ते रहना चाहिए नन्ना चाहिए मेहनत नन उल्ला माखा जे मेहनत नन्नो रुले इंद्र इम भी आलो से बनु खखरो का लो
0: कोड़े कथा बाचिर बहिन परिश्रम दिम आलय गही जिंदगी नु सफलता ई दी एकासे का इन्नेला कुहा कुहा आलय बनने बंजकर नए उद्योगपति विषय आलय या राजनेता या अभिनेता विषय और मैं बिना मेहनत ही मल बंज कर नए का मला
1: हाँ
0: आर हूँ कड़ी मेहनत उल्ला माखा नर की हूँ आर सफलता हक कर नए और

0: आदिवासी अकड़ा धत्ता मिनूरती एम बिदा हो दम एन सुमल लकड़ा
1: रानेली ग्रेसिक का
0: इन्नन ता प्रस्तुति रचा प्रदीप कुमारस तरती हुरमेरिन दो माखा अरा ओ लगी।

0: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम उरांव भाषा में था। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: दिन है। आगे आपका दोस्त राजेश, कैसे हैं आप सब युवा साथियों। इन दिनों नए कोर्सेज की चर्चा कर रहा हूं, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आज भी एक नया क्षेत्र है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और दूसरा कोर्स था आप सबों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आज परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और ये आया है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, बहुत ही उम्दा संस्थान, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी। उससे पहले हम शेयर करते हैं अपना मोबाइल नंबर कि अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारियां चाहिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के विषय में जानकारी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, मेडिकल के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, नर्सिंग के लिए यानी बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, या फिर जर्नलिज्म के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो ये नंबर इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121001, 1800121001, और एक वेबसाइट भी है जहां जा सकते हैं आप, www.gnsu.ac.in। हमने कहा, राजेश हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और करियर को और अपने जिंदगी को एक नई उड़ान दे दीजिए। कहते हैं ना कि बुनियाद मजबूत कीजिए। बहरहाल आज समय नहीं जाया करते हुए आप सबों को जानकारी देते हैं कि एक और नया कोर्स आया है वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ सेक्टर में एक मुकाम बनाना चाहते हैं। वो क्षेत्र है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में जानकारी हम दिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे ही हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनका परिचय लेते हैं।
1: हाँ नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुनियाद के आज के अंक में। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है युवाओं का। जी हाँ, उनके गार्जियन भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानकारियां दें।
1: बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली पे वो काम करते हैं। जब किसी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, उस दौरान उनकी हार्ट और लंग्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब वो हार्ट और लंग जो कि अगर निष्क्रिय है तो पेशेंट कैन डाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए देयर इज अ लाइफ सपोर्ट मशीन जिसको कहते हैं हार्ट लंग मशीन, उसको ऑपरेट करने का काम यह परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के जने करते हैं। यानी उस पर्टिकुलर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हाथों में ही रहती है। तो इनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा आप इसको कह सकते हैं कि निगरानी वाला महत्वपूर्ण कार्य है।
0: प्रोफेसर नीरज, पहली बार बिहार और झारखंड में बुनियाद कार्यक्रम में ये जो कोर्स है ना परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, ये जा रहा है लोगों के बीच। हाँ, लोगों को जानकारियां पहुंच रही है कि ये कोर्स भी होता है और ये कोर्स गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में, और नीरज जी आप ही के देख रेख में ये कोर्स चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा, और अभी जो आपने आंसर दिया है उससे संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन वो कौतूहल अभी बना हुआ होगा। हम एक बार फिर चाहेंगे कि उस कौतूहल को आप शांत करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे सीधे फ़ोन पर बात कर लें 9431899002, 9431899002 और 1800

0: 01210051। हाँ नीरज जी,
1: हाँ यह कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स मेरे ख्याल से बिहार झारखंड में बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो नाके बराबर होंगे बिहार में, या बहुत कम ही होंगे जहां ये होता है। और ये कोर्स जैसे बताया कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि बच्चे इसमें इतने स्किलफुल होते हैं कि एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनको उस मशीन को ऑपरेट करके उन्हें जिंदा रखना होता है, ताकि उनके पूरे शरीर में, पेशेंट के शरीर में ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन्ड रहे, ये इनका काम होता है।
0: वेल, बहुत अच्छा। साथ साथ हमारे युवा साथियों और उनके माता पिता को प्रोफेसर साहब ये भी बताते चलिए कि ये कितने साल का कोर्स होता है।
1: ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है।
0: अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आप जैसे मालूम है कि हमें पेशेंट पे ये काम करना है, तो उसके लिए एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और श्रोताओं को ये बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारे पास अपना इन हाउस हॉस्पिटल भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे पास एन नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें कि हमारे यहाँ उनको अच्छा एक्सपोजर ही मिलने की पूरे चांसेस हैं। और चूँकि हमारे यहाँ अपने यहाँ एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट वैसे काम भी कर रहे हैं, उनकी देख रेख में ये लोग अच्छा सीख भी लेंगे।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, और मैं हूँ राजेश। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज हैं, जो जानकारी दे रहे हैं एक नए कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में, जो इसी सत्र से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास में शुरू हुआ है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। और आपको बताएं कि इससे पहले हमने 2 कोर्सेज की चर्चा की थी, जिसकी शुरुआत भी इसी सत्र से हुई है, और इसके लिए भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इन दोनों और इन तीनों, अगर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को जोड़ ले मित्रों, तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। आप चाहें तो अधिक जानकारियां ले सकते हैं इन नंबरों से, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। प्रोफेसर नीरज, एक बात बताइए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे आपके यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो आपका जैसा कि बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, 1200 करीब बेड है वहाँ पर, तो हमें ये जानकारी चाहिए आपके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड में ले जाने के लिए कि क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और मिलता है तो कब से और कितना।
1: जी, हमारे बच्चों की वहाँ पर रोस्टर लगती है, हर महीने वाइज, मंथली वाइज उनकी वो रोस्टर बनती है, और उसके हिसाब से उनकी वहाँ पर पोस्टिंग लगती है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, 4 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी, और जब 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें भी उनके रोटेटरी इंटर्नशिप की रोस्टर बनती है, फिर वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि जो इस क्षेत्र में पहले के दूसरे कोर्सेज हैं वहाँ के बच्चे ड्यूटी करते हैं और वहाँ अपनी काबिलियत प्रूफ करते हैं, और अब ये जो 3 कोर्स हम बता रहे हैं लगातार, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज और बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, क्या एक बात बताइए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छा करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें क्या आप उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी नौकरी लगती है, अपने बच्चों को लेते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, ये हमारी तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे और भी पिछले कोर्सेज, पुराने कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के हॉस्पिटल में एब्जॉर्ब हुए भी हैं, और वो हमारे परस्पर संपर्क में भी रहते हैं, उनसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं, उनको कई दफ़ा हम एलुमनाई लेक्चर भी कराते हैं, करियर काउंसलिंग भी उनसे कराते हैं, तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं।
0: हम चाहेंगे अब आपसे कि पूरा बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुन रहा है हमारे बुनियाद कार्यक्रम को, वर्षों हो गए इस कार्यक्रम को लेकर आते आते बुनियाद को, और इस पर लोग भरोसा रखते हैं, युवा साथी भरोसा रखते हैं, गार्जियन भरोसा रखते हैं, और भरोसा रखते हैं ने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार पर भी। हम आपसे प्रोफेसर नीरज ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स बोले तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, ब्ला ब्ला जितनी भी जानकारियां हैं आप दे दीजिए।
1: ये टेन इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ 45% मार्क्स इन ऑल टुगेदर। और हमारे यहाँ सीट इसकी है 10 हमने रखी है अभी, और आगे भविष्य में देखेंगे हम इसको बढ़ाना होगा, पर फिलहाल हमने अभी 10 सीट्स रखी है इनकी। और ये जैसे मैंने पहले बताया 4 साल का कोर्स है, 3 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल का इंटर्नशिप होगा। और यह कोर्स कराने के लिए हमारे पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद आर पोस्टिंग्स डन इन NMCH।
0: इस कोर्स को करने के बाद रोजगार क्या क्या क्या डिमांड क्या है, क्या डिमांड है इस कोर्स की?
1: ये जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ती जा रही है, अब जब ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ेगी तो पेशेंट्स के हार्ट्स एंड लंग्स को निष्क्रिय किया जाएगा, उस दौरान परफ्यूजनिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड भी धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ भी अब स्पेशलाइज्ड ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ भी प्रोफेशनिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना ही नहीं, आप बहुत सारे आपने भी जानते होंगे कि हर जगह जगह सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और एक और ऑप्शन होता है विदेशों में करियर का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया सुपर स्पेशलाइज्ड ये कोर्स है तो इनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ के बाहर भी अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, तो वहाँ भी इनके पास चांसेस हैं। और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर MSc मास्टर्स करके ये टीचिंग में भी आ सकते हैं।
0: अच्छा नीरज जी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो बच्चे रोजगार नहीं करना चाहे या अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं, तो क्या उन्हें कॉल पर भी तो बुलाया जाता होगा?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल पे बुलाया जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि उनका दे हैव द टाई अप विद और कॉन्टैक्ट विद 10 or more than 10 or 20 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो दे आर इनको ऑन कॉल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, और ये वहाँ जाके हर जगह से अपना काम करके दे कैन चार्ज।
0: बहुत ही उम्दा कोर्स है, हाँ बहुत ही, हाँ पैसा कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अगर आप दाखिला लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखिए, जैसा कि प्रोफेसर नीरज ने बताया है कि सत्र से सिर्फ 10 सीटें ही हैं, इसलिए देर नहीं कीजिए। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, आपसे एक जानकारी आपने दी, आपके सामने ही लोगों को बोल दें कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज में भी मात्र 30-30 सीट ही है। अगर उधर की तरफ रुख करते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी, हाँ प्रयास करना होगा। और अब थैंक यू प्रोफेसर नीरज, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे। समय खत्म हो रहा है, प्रोफेशनल पढ़ाई करने की हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी पिछले दिनों हम बहुत चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल नोट करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये नंबर जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 9431899002 9431899002। तो राजेश को दीजिए इजाजत, थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: इस समय आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम है रजनीगंधा। कार्यक्रम में सुनते हैं अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक को फिल्म बागवां में।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे थोड़ी ही देर में।

0: and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुभोमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम

0: अभी शो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000+ करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं। इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे तो हम उसको खरीद रहे थे।
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
1: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
0: राइट आदिति, लेट्स टॉक ऑफ द वुमेन फोक, लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
1: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी
0: जी।
1: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक
0: जी।
1: वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
0: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा अदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
1: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत ये खूबसूरत से गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में

0: शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia

0: दोनों मुल्कों ने करीबी ताउन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती ताउन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम ने म्यांमार की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने, एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन 2 अरब डॉलर पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इकतसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती माहिदा नहीं है बल्कि यह तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि यह जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इतला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सब

0: और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में टीएमसी की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमल आवरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदाम पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमलावरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद व शुमार सनअती पैदावार के नज़रसानी शुदा इशारे IIP सीरीज़ पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज़ आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 01

0: एक लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्सेंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत सावधान से बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीपाद डॉक्टर बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासकर ना हाई बीपी वाले ने।
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है COPD एस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल

0: से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी।
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी के एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपके तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
3: बिल्कुल
1: क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
3: घर फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
4: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
4: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित

0: दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद
0: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
1: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
1: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
2: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
1: बिल्कुल।
2: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए खतरा क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
2: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
2: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआरसा घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
1: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम

0: विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
1: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिजम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
0: जी,
3: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बसवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा?
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: आईएमडी जो
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
4: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो

0: देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मेकानिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहा है आपको, ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक IMD का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30-3 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन पर गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: रहें। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल
1: जो बहुत, का बच्चा
3: बिल्कुल
1: है,
3: बिल्कुल
1: उसके लिए
3: सुस्तीपन दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज

0: का पानी पीते हैं वो कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पर।
2: देखिए जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं तो बट आजकल क्या होता है क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है लेकिन उसका उसका प्लेन में भी रहेगा, जब जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
2: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला पहला क्या हो रहा था जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, कार्यक्रम है सुनहरी यादें। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म दिल एक मंदिर में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में सुनते हैं। फिल्म बात एक रात की के गीत को गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत सचिन देव वर्मन का।

0: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मोहम्मद रफी को। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत रवि का, फिल्म का नाम है भरोसा।
1: गोमी ये झुके झुके नैना ये लटबल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना होते।

0: और अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत रोशन का, फिल्म का नाम है ममता।
1: एक तो मैंने लिख लिया। हमारे

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका।
0: मैं माँ हूं ना, सुपर्णा के दिल की बात मैं ही समझ सकती हूँ।
1: हाँ।
0: मनीष, एक बार मुझे दिखा दो तो उस लड़के को।
1: सच? मैं यही चाहता था तुझे जानना।

इससे मैं आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुनहरी यादें।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म झुक गया आसमान में लता मंगेशकर को। गीत रचना हर्षद जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म झुक गया आसमान में मोहम्मद रफी को। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। शब्द रचना अख्तर रोमानी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित सियाराम तिवारी से राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन, चाल चौताल है और राग संकरा में गायन ताल शूल ताल है।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित सियाराम तिवारी से गायन सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल